ये आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में, फिल्म घर से। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

ये आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म है अभिमान, गीत लिखा है मजरू ने और संगीत है SD बर्मन का। आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत मजरू का और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम है अभिनेत्री। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: ये आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है व्हाट्स फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत प्रेम पुजारी फिल्म से। गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत नीरज का लिखा हुआ और संगीत है SD बर्मन का। आइए सुनते हैं ये गीत।

सुबह के 8 बज रहे हैं। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़, ये दोनों ही बुलेटिन हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। उसके ठीक बाद आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात

0: के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामीनाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है।

0: राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naulekar, would submit its report within a year.
3: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
2: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and Creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate border out.

ये आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं मुकेश के भजन।

0: इस वचन के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: के बाद भी
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। सादगी, मितव्ययिता और सुशासन के मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक ही बस में सवार होकर इंदौर से उज्जैन तक की यात्रा की। मध्य प्रदेश ने देशभर में किसानों से सर्वाधिक गेहूं खरीदने का नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 13,46,000 से अधिक पंजीकृत किसानों से 1,03,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। भोपाल में तुषार शर्मा की मौत के मामले में सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरबाला सिंह को कल गिरफ्तार कर लिया गया। बहू की मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। भोपाल में नगर निगम द्वारा स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए 91 स्थानों से पानी के नमूने लेकर जांच करवाई जा रही है। महापौर और निगम आयुक्त के निर्देश पर अमले ने 27 पाइपलाइन लीकेज सुधारे हैं और हेल्पलाइन की 4 शिकायतों का निवारण किया है। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर और सागर संभागों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। और आज ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर कला, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया तथा भिंड जिलों में तीव्र लू के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
3: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। एक बार फिर लौटते हैं सुरमई सवेरा के सफर की ओर।
0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 9 बज रहे हैं। अब समय है सूचना समाचार और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का।

सूचना समाचार और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में मैं आशी राठौर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। श्रोताओं, आज की तारीख है 29 मई और आज क्या क्या है खास इतिहास में, आज के दिन का क्या क्या महत्व है, आज के कार्यक्रम में हम आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे।

श्रोताओं, आज है चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि, साथ ही संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके साथ साथ आज है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। तो आज के कार्यक्रम में हम आपसे इन्हीं सब विषयों पर एक के बाद एक चर्चा करेंगे। श्रोताओं, चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि 29 मई को मनाई जाती है। वे भारत के एक महान किसान नेता और राजनेता थे, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका निधन 29 मई 1997 को हुआ। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और उनकी नीतियों ने किसानों की स्थिति सुधारने में बड़ी भूमिका निभाई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति के ऐसे महान नेता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों और ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें किसानों के मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें भारतीय कृषि व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और संघर्ष का प्रतीक था। वे बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मेरठ से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने गाज़ियाबाद में वकालत शुरू की। वकालत के दौरान वे गरीबों और किसानों की समस्याओं को समझने लगे। इसी समय उनके मन में समाज सेवा और राजनीति में आने की प्रेरणा उत्पन्न हुई। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर चौधरी चरण सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अनेकों आंदोलनों में भाग लिया, जैसे नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। वे कई बार अंग्रेजों द्वारा जेल भी भेजे गए। ग्रामीण जनता को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों और आम जनता को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए। वे 1937 में पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। उनकी पहचान एक ईमानदार, स्पष्टवादी और किसानों के हितैषी नेता के रूप में बनने लगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे राजस्व मंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भी रहे। उनका सबसे बड़ा योगदान किसानों और ग्रामीण समाज के लिए था। उन्होंने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कानून के कारण किसानों को उनकी जमीन का अधिकार मिला और शोषण काफी हद तक कम हुआ। उन्होंने किसानों को कर्ज से राहत दिलाने का प्रयास किया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की। छोटे किसानों के अधिकारों की रक्षा की और ग्रामीण विकास को भी प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि भारत की असली शक्ति गांव और किसानों में बसती है। वे 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए और प्रशासन में सुधार भी किए। उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत किया और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उनकी सरकार किसानों और गरीबों के हित के लिए जानी जाती थी। July 28, 1997 को वो भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल अधिक लंबा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने किसानों और ग्रामीण भारत की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास को भी प्राथमिकता दी। वे चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर बने और गांवों का विकास हो।
उन्होंने प्रशासन में सादगी और ईमानदारी का उदाहरण प्रस्तुत किया। वे केवल राजनेता ही नहीं बल्कि एक अच्छे लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने कृषि, अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास पर कई पुस्तकें लिखी, जैसे कि इंडियाज़ पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। उनके विचार आज भी भारतीय कृषि नीति में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व अत्यंत सरल और प्रेरणादायक था। वे हमेशा सादा जीवन और उच्च विचारों में विश्वास रखते थे। आज भी देशभर के किसानों ने सम्मान और श्रद्धा से याद करते हैं। उनके नाम पर कई विश्वविद्यालय, संस्थान और सड़कें बनाई गईं। उनतीस मई 1987 को चौधरी चरण सिंह का निधन हो गया। उनके निधन से भारतीय राजनीति और किसानों को बहुत बड़ी क्षति हुई। वे भारतीय राजनीति के ऐसे महान नेता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों और गरीबों की सेवा में लगा दिया। वे सच्चे अर्थों में किसानों के नेता थे। उनका जीवन हमें सादगी, ईमानदारी और समाज सेवा की प्रेरणा देता है। आज भी जब किसानों के अधिकारों की बात होती है तब चौधरी चरण सिंह जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। वे सदैव भारत के किसानों के मसीहा के रूप में याद किए जाएंगे। श्रोताओं, आज संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। ये प्रत्येक वर्ष 29 मई को ही मनाया जाता है। ये दिवस उन 72 सैनिकों, पुलिसकर्मियों और नागरिक कर्मचारियों के सम्मान में मनाया जाता है जो विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे देते हैं। ये दिन हमें मानवता, शांति, सहयोग और सेवा की भावना का संदेश देता है। यह दिवस पहली बार वर्ष 2003 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य दुनिया भर में कार्य कर रहे संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के योगदान को सम्मान देना तथा शांति स्थापना के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक विभिन्न देशों से आते हैं। इनमें सैनिक, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य नागरिक कर्मचारी भी शामिल होते हैं। वे संघर्षरत क्षेत्रों में जाकर लोगों की सुरक्षा करते हैं, युद्ध विराम लागू करवाते हैं और मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं। साथ ही साथ ज़रूरतमंद लोगों तक भी सहायता पहुँचाते हैं। इस दिवस का क्या खास महत्व है? श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस केवल एक औपचारिक अवसर नहीं बल्कि ये उन लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और इस दिवस के कुछ खास मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, जैसे कि इनका उद्देश्य है विश्व शांति का संदेश फैलाना, शांति सैनिकों के साहस और बलिदान को सम्मान देना, देशों के बीच सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देना, हिंसा और युद्ध के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करना, मानवाधिकार और मानवीय मूल्यों की रक्षा करना। श्रोताओं, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में से एक है। भारतीय सेना के हजारों जवान कई देशों में शांति स्थापना के कार्यों में भाग ले चुके हैं। भारतीय सैनिकों ने अपने साहस, अनुशासन और सेवा भावना से पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त किया है। भारत ने अफ्रीका और एशिया के अनेक देशों में संयुक्त राष्ट्र मिशनों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई भारतीय सैनिकों ने शांति स्थापना के दौरान अपने प्राणों का भी बलिदान दिया है। ये पूरे देश के लिए बेहद गर्व की बात है। शांति रक्षकों के कार्य में कई सारी चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है और इनका कार्य अत्यंत कठिन और जोखिम भरा होता है। जो चुनौतियों का अक्सर ये सामना करते हैं वो हैं युद्ध और हिंसा का खतरा। कई बार इन लोगों को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी रहना पड़ता है, साथ ही साथ सीमित संसाधनों में भी गुजारा करना पड़ता है।
जब अन्य देशों की बात होती है तो भाषा और संस्कृति का अंतर भी सामान्यतः देखा जाता है। साथ ही साथ आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता भी एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है जिसका सामना शांति रक्षकों को करना पड़ता है। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद श्रोताओं, शांति सैनिक अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और साहस के साथ करते हैं और सच भी है कि वे युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का जीवन बेहद प्रेरणादायक तो है ही, साथ ही हम उनसे सेवा, त्याग, अनुशासन, मानवता और विश्व बंधुत्व की भावना भी सीखने को मिलती है। आज के समय में जब पूरे विश्व में कई संघर्ष और समस्याओं से हम जूझ रहे हैं और आसपास देख रहे हैं, तब शांति और सहयोग का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं बल्कि मानवता, सहयोग और विश्वास का भी प्रतीक है। ये दिवस उन वीर शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी अवसर है जिन्होंने दुनिया को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। हमें भी अपने जीवन में

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ, 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: श्रोताओं, एक बार फिर आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। श्रोताओं, 29 मई के दिन राष्ट्रीय ताप जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। ये हर वर्ष मई महीने के अंतिम शुक्रवार को मनाया जाता है। तो इस वर्ष यानी 2026 में ये आज के दिन 29 मई शुक्रवार को मनाया जा रहा है। मानव जीवन में स्वास्थ्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बदलते मौसम, बढ़ते प्रदूषण और अनियमित जीवन शैली के कारण लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं। इन्हीं समस्याओं में से एक है ताप। यानी हम अब बात करते हैं आपसे राष्ट्रीय ताप जागरूकता दिवस की। ताप अर्थात शरीर का असामान्य रूप से गर्म हो जाना या बुखार। लोगों को ताप एवं उससे जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ताप जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने, समय पर उपचार करने तथा स्वच्छता अपनाने की प्रेरणा देता है। जब शरीर का सामान्य से तापमान बढ़ जाता है तो उसे बुखार या ताप कहते हैं। सामान्यतः मानव शरीर का तापमान लगभग 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब शरीर किसी संक्रमण, वायरस या बीमारी से लड़ता है तब शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ये कई बार सामान्य रूप से भी हो सकता है, लेकिन लगातार अधिक ताप बीमारी का संकेत भी होता है। जैसे कि इसके कई कारण हो सकते हैं, वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण, मौसम में अचानक से परिवर्तन, दूषित भोजन या पानी, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियाँ, अत्यधिक गर्मी या लू लगना, शरीर में कमजोरी या प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है लोगों को बुखार और उससे जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक करना। इसके अंतर्गत लोगों को बताया जाता है कि बुखार को नज़रअंदाज ना करें, समय पर डॉक्टर से परामर्श लें, स्वच्छता बनाए रखें, साफ सानी और पौष्टिक भोजन का सेवन करें, मच्छरों से बचाव करें और विशेषकर बच्चों और बुज़ुर्गों का ध्यान रखें। इसके साथ ही आज के दिन वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे यानी विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस को भी मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों, उनके बचाव, सही खान पान और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। यह दिवस विश्व भर में स्वास्थ्य संगठनों और चिकित्सकों द्वारा मनाया जाता है ताकि लोग अपने पेट और पाचन स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। मनुष्य के स्वस्थ जीवन में पाचन तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि हमारा पाचन तंत्र सही ढंग से कार्य ना करे तो शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है और हमें ऊर्जावान महसूस करते हैं। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली, अनियमित भोजन, जंक फूड और तनाव के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। इन्हीं समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पाचन तंत्र हमारे शरीर में भोजन को पचाकर पोषक तत्वों को शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है। यदि पाचन सही न हो तो गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट दर्द, मोटापा तथा अन्य गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। अच्छा पाचन स्वास्थ्य शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को पाचन संबंधी रोगों के प्रति जागरूक करना, जिससे लोगों को संतुलित आहार लेने और नियमित व्यायाम करने, अधिक पानी पीने और स्वच्छ भोजन अपनाने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ उन्हें यह भी समझाया जाता है कि पेट की बीमारियों की समय पर जांच और उपचार के महत्व को भी समझें।

कुछ उपाय हैं जो हम अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि संतुलित और पौष्टिक भोजन, ताज़े फल और हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन, अधिक तला भुला और जंक फूड खाने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित व्यायाम और योग करें, समय पर भोजन करें और अधिक तनाव से बचें। विद्यालय, अस्पताल और सामाजिक संस्थाओं द्वारा इस दिन स्वास्थ्य शिविर, जागरूक रैलियां और व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। बच्चों और युवाओं को स्वस्थ भोजन की आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ ही विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस हमें ये संदेश देता है कि स्वस्थ शरीर के लिए पाचन तंत्र का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। यदि हम सही खान पान और नियमित दिनचर्या अपनाएं तो अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। वो कहते हैं ना, स्वस्थ पाचन स्वस्थ जीवन की पहचान। कार्यक्रम में अभी बातें आपसे और भी हैं, उससे पहले ये सुनते हैं प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी अत्यंत गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी का मौसम अपने साथ तेज़ धूप, पसीना और थकान लेकर आता है। इस मौसम में शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए सही खान पान और पर्याप्त पानी पीना बहुत आवश्यक है। शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना ही हाइड्रेशन कहलाता है। पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने, पाचन क्रिया और को सही रखने और शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालने में मदद करता है। यदि शरीर में पानी की कमी हो जाए तो चक्कर आना, सिर दर्द, थकान, कमजोरी और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी हमें पीना चाहिए। बच्चों, बुज़ुर्गों को विशेष रूप से अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आशा करते हैं आप अपनों का और अपना इस भीषण गर्मी में ख्याल रखेंगे और हाइड्रेटेड रहेंगे। अब समय हो चला है इस कार्यक्रम को विराम देने का, तो अपनी मित्र आशी को दीजिए अनुमति। नमस्कार, और इसी के साथ अब ये कार्यक्रम भी समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सूचना और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पद्मजा विश्वरूप का विचित्र वीणा वादन। राग है गुजरी तोड़ी। आइए सुनते हैं पद्मजा विश्वरूप का विचित्र वीणा वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पद्मजा विश्वरूप का विचित्र वीणा वादन, राग था गुजरी तोड़ी। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10 बज रहे हैं। जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख है नवीन श्रीवास्तव का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। ग्वालियर जिले के लिए ये महीना मिला जुला रहा। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्वालियर में राज्य स्तरीय पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादक सम्मेलन का शुभारंभ करने भी पहुंचे। उन्होंने सम्मेलन में मौजूद सभी को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से जुड़कर प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने में सहयोग देने का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर में पशुओं के केयर एंड वेलनेस सेंटर खोलने, पशु स्वास्थ्य एवं उपचार केंद्र का उन्नयन करने और डबरा में नया पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के साथ अन्य अतिथिगणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ऋषि गालव विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार भूमि पूजन किया। गौरतलब है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण मध्य भारत शिक्षा समिति के द्वारा ग्वालियर जिले के बेला गांव के अंतर्गत लगभग 55 बीघा जमीन पर 110 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। अगले वर्ष गुरु पूर्णिमा से यहाँ शैक्षणिक सत्र शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। संपूर्ण विश्वविद्यालय 3 वर्ष में बनकर तैयार होगा। ग्वालियर जिले में भी जनगणना कार्य निदेशालय के द्वारा निर्धारित जनगणना कार्यक्रम के तहत जनगणना का प्रथम चरण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी रुचिका चौहान ने शहर में चल रहे जनगणना कार्य का बीते दिनों औचक निरीक्षण किया। उन्होंने न्यू दर्पण कॉलोनी में प्रगणकों द्वारा की जा रही जनगणना की वस्तुस्थिति को जाना। गौरतलब है कि बीते 1 मई से शुरू हुई जनगणना का प्रथम चरण 30 मई तक चलेगा। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हाल ही में सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन जिले में किया गया। इस श्रमदान कार्यक्रम के तहत लक्ष्मीगंज स्थित ऐतिहासिक मेहराब साहब की तलैया पर सांसद भारत सिंह कुशवाहा की अगुवाई एवं कलेक्टर रुचिका चौहान की प्रेरणादायक मौजूदगी में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजनों ने एक साथ तलैया की सफाई में अपना योगदान दिया। ग्वालियर जिले में भी भूमि नामांतरण प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है। इसके साथ ही इस व्यवस्था से नागरिक सुविधाओं को अधिक सहज और प्रभावी बनाया गया है। साइबर तहसील 2.0 वर्तमान में जिले की सभी तहसीलों में प्रभावी रूप से संचालित हो रही है। वहीं जिले के विकास खंड घाटी गांव की ग्राम पंचायत आरोन में जलगंगा संवर्धन अभियान एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास 2.0 के तहत यहां बने कोलीझोरा तालाब ने यहां के 50 हेक्टेयर बंजर नुमा सूखे क्षेत्र के रकबे को उपजाऊ खेतों में बदल दिया है। अब इन खेतों में गेहूं और सरसों की फसलें लहलहाने लगी हैं। ग्वालियर जिले में समर्थन मूल्य पर सुव्यवस्थित ढंग से गेहूं का उपार्जन जारी है। जिले में गेहूं उपार्जन के लिए 40 केंद्र संचालित हैं। 22 मई तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में 7,448 किसानों से 9,97,494 क्विंटल गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। बीते दिनों प्रदेश के जल संसाधन एवं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पेयजल प्रबंधन के साथ साथ जनहित के अनेक मुद्दों पर विस्तार से समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पिछले दिनों न्यायमूर्ति गुरुपाल सिंह अहलूवालिया ने संत योगी हुजूर मालिक साहब के जीवन पर आधारित पुस्तक दिव्य चरितामृत का विमोचन किया। आध्यात्म निकेतन में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के भी उपस्थित थे। इसकी अध्यक्षता संत कृपाल सिंह ने की। कलेक्टर रुचिका चौहान की पहल पर हुए शक्ति दीदी नवाचार के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इस नवाचार के तहत जरूरतमंद महिलाओं को पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर की नौकरी दिलाई जा रही है। जिले में वर्तमान में शक्ति दीदी के तहत पहले से ही 112 महिलाएं ये भूमिका सफलतापूर्वक निभा रही हैं। पिछले दिनों ग्वालियर में आदर्श गौशाला लाल टिपारा के बायोगैस प्लांट का राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने जायजा लिया। गौरतलब है कि गाय के गोबर से सीएनजी बायोगैस उत्पादन के क्षेत्र में यह प्रदेश के सबसे बड़े प्लांट में से एक है। आदर्श गौशाला लाल टिपारा ने गौवंश के प्रबंधन के साथ साथ गाय के गोबर व कचरे से बायोगैस उत्पादन कर देश प्रदेश के लिए अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। ग्वालियर जिलेवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तथा प्रशासनिक फैसलों तथा सरकारी और जनहित से जुड़ी हर आधिकारिक जानकारी सीधे आपके मोबाइल फोन पर मिलेगी। कलेक्टर ने हाल ही में इससे संबंधित एक व्हाट्सएप चैनल का शुभारंभ किया है। ग्वालियर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: अभी आप सुन रहे थे ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख था नवीन श्रीवास्तव का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 10:05। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की पहली फरमाइश है, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप। इस गीत को सुनने की फरमाइश है बुल्ढाना वर्षिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, साथ ही MLB रोड ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और SK पप्पी खुराना। आप सब सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर फिल्म युवा का ये गीत, जिसे शुरू में सजाया है मधुश्री ने। गीत AR रहमान का और संगीत महबूब का है। आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है आप सबकी। आप हैं नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामणि से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। क्वाद बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर। साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश है रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोटके। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर लता मंगेशकर का गाया, देव कोहली का लिखा और राम लक्ष्मण का संगीतबद्ध किया ये गीत फिल्म मैंने प्यार किया से।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है फिल्म बॉर्डर के लिए। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने। इस गीत को अपने सुरों से सजाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश है आप सबकी। आप हैं राम लोहड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव इंद्रपाल यादव राघवेंद्र अरविंद रागिनी रिया रेणु दिव्यांशी आराधना रौनिका यादव चंद्रेश गुहर और सुनील पाठक। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूलट नेहा जैन दीपक मयंक चेतन नाहटा दीक्षा और कुश मूड़त। साथ ही इसी गीत को सुनने की फरमाइश है आपकी। आप हैं दिल्ली बिहारी कॉलोनी से तुलसी मस्कीन बीना मस्कीन आशीष राजा चैतन्य मस्कीन मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता खुराना केशु खुराना आप सब सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नसीर, सादे शाहिद और गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सभिया मुजावर, मिखाइल जनैब मुजावर। साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास और अनीता पुष्पा श्रीवास। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर।

साथिया फिल्म का ये गीत, जिसे अपने सुरों से सजाया है ऋचा शर्मा, महालक्ष्मी और वैशाली ने, गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं AR रहमान। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनवाते हैं। अगर आप भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9425702768। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 9425702768। फिल्म और गीत के नाम के साथ साथ आप अपना नाम और पता हमें लिख भेजें।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। इस गीत को सुनने की फरमाइश है धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया और अयान बाबू। साथ ही इसे सुनना चाहते हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, शाहजी नगर, देगलूर जिला, नांदेड़, महाराष्ट्र से। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर लम्हे फिल्म का ये गीत लता और सुरेश वाडकर के स्वर में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है शिवहरी ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है आर्यनगर खोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। धमथा ग्राम सुखारी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।

इसके साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश है बठिंडा रोड ड्रमवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग की। आप सब सुनना चाहते हैं डुप्लीकेट फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया है। इस गीत को अपने सुरों से सजाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश है गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवशहर से सुरेंद्र संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, प्रतिशा संधु और मैक्स। आप सब सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर ये गीत। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और फिल्म केदारनाथ के लिए। आवाज़ है अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की। आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। अगली फरमाइश है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय। इस गीत को सुनना चाहते हैं न्यू बजरंग कॉलोनी राजा गैस गोदाम मोल गोल पहाड़िया लश्कर ग्वालियर से नेताराम गोड़िया, सरोज गोड़िया, शशि कुमार गोड़िया, भावना गोड़िया, नीरज गोड़िया, अर्चना गोड़िया, आध्या, श्रेया और देवांशु। आप सब सुनना चाहते हैं केसरी फिल्म का ये गीत जिसे लिखा है तनिष्क बागची ने, स्वर हैं अरिजीत सिंह और आशीष कौर के, संगीत भी है तनिष्क बागची द्वारा। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम भी यहीं समाप्त होता है। हमारी अगली पेशकश आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: आकाशवाणी भोपाल है, समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। इस दौरान श्री अमित शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात भी करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन उन्होंने देहरादून में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक में संगठन विस्तार, बूथ सुदृढ़ीकरण, जनसंपर्क अभियान और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। CBI ने त्रिशा शर्मा मौत मामले में उनकी सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला

0: विशाख की सास और सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं। गिरफ्तारी कल भोपाल में हुई। गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने करीब 7 घंटे तक उनके घर पर पूछताछ और तलाशी ली। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, सतना और भिंड सहित प्रदेश के 10 जिलों में तीव्र लू के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल ब्रिस्टल में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

0: श्रोताओं नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, सिर्फ जरूरतें पूरी करना ही जिंदगी नहीं है, कुछ ख्वाहिशों के साथ जीना भी जिंदगी है। यूं तो हम सभी जीते हैं अपनों के लिए, मगर कुछ खुशियां औरों के नाम करना भी जिंदगी है। सबसे लड़कर जमाने से आगे बढ़े तो क्या बढ़े, कभी कदम से कदम मिलाकर चलना भी जिंदगी है। अपनी खुदगर्जी पर गुरूर करके क्या साबित होगा, कभी औरों के दर्द को समझना भी जिंदगी है। इसी सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचार के साथ आइए शुरू करते हैं आज का फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने। आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। नमस्कार जी। जी जी, फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम। आप कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मैं ग्राम संदलपुर से कार्यक्रम।
0: अच्छा, आवाज कम आ रही है। चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं अब। ठीक है,
1: भाई
0: जी जी बताइए।
1: मेरे को गाना सुनना है।
0: हाँ जी, किस फिल्म का गाना सुनना है और कौन सा गीत के बोल बताइए।
1: पिक्चर गाना है लता की आवाज में, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
0: छोड़ दे सारी दुनिया, ठीक है।
1: हाँ, जी। पसंद है मेरे को।
0: जी, आप क्या करते हैं।
1: मैं पान की खेती करता हूँ। देसी पान होता हमारे गाँव में, संदल पर माधरी पास गाँव मेरे ग्वाली के पास में।
0: जी जी जी, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आप कार्यक्रम सुनते रहिए और अपनी पसंद का गीत।
1: आप मैडम कौन बोल रही हैं।
0: जी, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ।
1: दोस्तों को नाम लेना चाहता हूँ, गाना सुनना चाह रहे हैं मेरे सामने साथ में।
0: जी बिल्कुल, उनसे कहिए, फोन करेंगे तो हम बिल्कुल उनकी फरमाइश शामिल करेंगे।
1: नाम तो बोल देना, मैं नाम बता रहा हूँ।
0: जी, दो नाम बता दीजिए जल्दी से।
1: मरार से गुड मिश्रा, संतर मरार से।
0: हाँ जी, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार
1: नमस्कार बहन जी।
0: जी। कौन बात कर रहे हैं बताइए, अपना नाम और अपनी पसंद भी बताइए।
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से बहन जी आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ।
0: जी, मांगीलाल जी, स्वागत है आपका, बताइए कैसे हैं आप।
1: बस दीदी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ,
0: जी
1: और इस वर्ष से यही आशा करता हूँ कि हमारी दीदी भी ठीक है।
0: जी बिल्कुल, आपकी दुआएं हैं तभी हम इतने स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। जी बताइए, दुआएं तो हमेशा काम करती ही हैं मांगीलाल जी, बताइए, है ना।
1: सही है, दुआ ही सबसे बड़ी बात है, दुआ बहुत बड़ी
0: जी,
1: चीज
0: एक
1: है,
0: बार दवा काम करना चाहे भूल जाए, लेकिन
1: भूल
0: दुआएं
1: जाए
0: कभी
1: लेकिन
0: न
1: दुआ नहीं
0: कभी,
1: भूलेगी।
0: जी
1: दुआ
0: दुआएं कभी न कभी जरूर काम
1: सही है,
0: करती हैं।
1: सही है,
0: जी
1: लेकिन इंसान को सच्चे दिल से देना चाहिए।
0: बिल्कुल, तभी तो वो, और वो जल्दी भी होती
1: हाँ
0: है, जो सच्चे दिल से दी जाती है वो बहुत
1: जी
0: जल्दी भी परिणाम देती है हमें।
1: जी सही है बहन
0: जी
1: जी।
0: मांगीलाल जी, बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए।
1: बहन जी, फिल्म का नाम तो है तलाश,
0: जी
1: आज क्या जिमली आत्मा।
0: बहुत अच्छी पसंद है आपकी, बहुत
1: हाँ बहन जी, बढ़िया
0: पुरानी।
1: है पुराना गाना, और मैं भी आकाशवाणी भोपाल का बहुत पुराना और नियमित सोता हूँ।
0: जी धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं जिला दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: दमोह से कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम भी तो बताइए।
1: मल्थुराम केवलारी अहरवाल।
0: अच्छा जी, अब अपनी पसंद का गीत भी बता दीजिए।
1: सुना दीजिए, देख देख मेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान।
0: अच्छा, क्यों आप इतने निराश क्यों हैं?
1: हाँ, मैं राष्ट्रीय गीत सुनता हूँ सर, श्रीमान जी अच्छे ही अच्छे। हाँ, तो सुनता हूँ आकाशवाणी से,
0: जी
1: और आज से नहीं मैं

0: मुश्किल से नंबर पकड़ पाया है आज, और मैंने अभी 4-5 बार लगाया, अभी नंबर तो लगा लेकिन उठा नहीं है।
1: जी जी जी, क्योंकि समय नहीं हुआ होगा,
0: नंबर उठ नहीं रहा है।
1: जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फ़ोन किया, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह कोशिश करते रहिए और कार्यक्रम में अपनी पसंद हमें बताकर हमें भी खुशी दीजिए। धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बता दीजिए।
0: कि कहते हैं नजरों से चाहत का इजहार करते हैं और हम प्रेमी आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल को बेहद प्यार
1: प्यार
0: करते हैं और
1: करते हैं।
0: बेसब्री से इंतजार करते हैं।
1: जी, तो आपका स्वागत है। हमारा भी बेसब्री से इंतजार था कि कब आपकी हम शायरी सुने हमको।
0: और कहते हैं खुदा करे किसी से फिदा ना करे, और फिदा करे तो फिर जुदा ना करे। मैं बता दूं, ग्राम कल्पा जिला सतना से आपका जाना पहचाना चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना हिंदुस्तानी कलाकार ईडन गार्डन अशोक वाटिका कल्पा से बोल रहा हूँ।
1: जी, आपका स्वागत है महमूद जी। अब अपनी फरमाइश भी बताइए, क्योंकि आपकी ऐसी रंगीन शायरी से हम और हमारे श्रोता तो गदगद हो गए, खुश हो गए। अब हम आपको खुश करना चाहते हैं आपकी पसंद का गीत सुनाकर।
0: समझ लो कि ईद तो है ही, आज ईद उल अजहा का त्योहार है, और समझ लो एक ईद और हो गई, आपसे बात हो गई। तो
1: जी, तो मुबारक हो आपको ईद की, और इस मुबारक मौके पर आपके लिए क्या पेश किया जाए, बताइए।
0: हाँ, बस गाना सुनना है मैडम जी। थोड़ी सी बात हम कहें कर लें सभी श्रोता बंधुओं को, हिंदुस्तानी जितने हमारे देश

0: पासी हैं, सभी को दिल से जो है तो नमस्कार और मुबारकबाद, और आप पूरे स्टाफ को।
1: जी जी शुक्रिया
0: जी जी। और ज्यादा श्रोताओं के नाम लेना बिल्कुल उचित नहीं है, बस प्रेम दास बाबा जी के नाम रहेगा और गाना रहेगा। अब गाना आप वही सुनवा दो, तीसरी आंख का अगर मिल जाए तो बहुत सही रहेगा।
1: बोल बता दीजिए।
0: गीत के बोल हैं ईद।

0: जा,
1: एक फरमाइश
0: तो मैडम जी सही रहेगा, नहीं फिर दूसरा बता दूं, क्योंकि गाना ये जो है तो शत्रुघ्न सिन्हा की शायद है, ऐसे दो तीन लोग मिलकर के इस फिल्म को बनाए, तीसरी आंख पुरानी।
1: जी जी, तो एक और बता दीजिए, अगर ये मिल गया तो हम इसे पहले सुना देंगे, और कभी खुदा न खास्ता न मिल पाया
0: तो फिर तो... गाना फिर एक और सुनवा दो, गेमलर फिल्म का है, पुरानी फिल्म का गेमलर।
1: अच्छा,
0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में है, और गीत के बोल है, अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, तेरी सांसों में मेरी सांस घुल जाए। और गीत अब शामिल करिएगा, और मैं बता दूं यहाँ शीत लहर का प्रकोप जारी है, क्योंकि सतना जिले के कल्पा में
1: शीत लहर चल रही है।
0: हाँ हाँ, गर्मी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा, बिल्कुल मीडियम, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे चारों तरफ से घेरे हुए हैं बिल्कुल, और नदी नाले चारों तरफ से पानी का अंबार लगा हुआ है, इसीलिए जो है हल्की फुल्की ठंडी महसूस होती है।
1: बहुत खूब, आप खुश नसीब है कि इतनी गर्मी में आपको इतना ही शीतलता मिल रही है।
0: मैडम जी गीत आप शामिल करिए, काफी दिनों में लगा, 15-16 दिन हो गए, एक हफ्ते के बाद ही लगा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पसंद बिल्कुल आपके रेडियो सेट पर। धन्यवाद
0: जी, नमस्कार, दिल से
1: नमस्कार।

0: हेलो, नमस्ते मैडम।
1: जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
0: पिंडरी जिला मंडला से सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ मैडम।
1: मंडला से कौन बात कर रहे हैं?
0: सुमत कुमार जैन
1: जी शेमत
0: जी, रिटायर्ड शिक्षक सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ, पिंडरी जिला मंडला से।
1: जी, शेमत कुमार जी, आप रिटायर्ड हैं, आपने बताया, आप शिक्षक भी हैं। कौन सा विषय पढ़ाते थे आप?
0: मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता था, सोशल साइंस
1: तो
0: जी,
1: आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते थे या हिंदी माध्यम में?
0: हिंदी माध्यम में पढ़ाया था मैडम, सरकारी
1: बहुत
0: स्कूल में। जी
1: जी, तो आप और क्या आपके शौक हैं? अब रिटायर्ड हो गए हैं, तो अब आपकी कैसी है जीवन शैली?
0: बढ़िया जिंदगी कट रही मैडम, अभी तो हम गर्मी का आनंद ले रहे हैं।
1: गर्मी का आनंद ले रहे हैं, ये भी अच्छी
0: और
1: बात है कि कोई सर्दियों का आनंद लेता है, लेकिन गर्मी भी अपने आप में जो है एक ईश्वर का ही तत्व है, तो उसे भी हमें आनंदित होकर ही स्वीकार करना चाहिए ना, शिकायत क्यों करें? जी
0: बिल्कुल
1: बताइए।
0: मेरे को सुना दीजिए मैडम, क्रोधी फिल्म का,
1: कौन सा गीत है?
0: क्रोधी फिल्म का गाना है, वो क्या कहती हैं, बहुत अच्छा गाना है मैडम, अभी कोई भी सुना दीजिए क्रोधी फिल्म
1: चलिए ठीक है, इसमें एक वो मसीहा आया है गीत भी है, और एक और
0: का।
1: है रेखा जी और धर्मेंद्र जी पर फिल्म आया हुआ, तो हम
0: हाँ, वो
1: आपको,
0: रेखा रवि का सुना दीजिए
1: जी
0: आप।
1: जी तो हम आपको सुनवाते हैं क्रोधी फिल्म का ये गीत। शुक्रिया।
0: जी, धन्यवाद मैडम।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार मैडम, मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव मवी जिला इंदौर।
1: विवेक व्यास जी बोल रहे हैं।
0: हाँ जी।
1: कैसे हैं आप बताइए
0: जी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैडम?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं और आपसे बात
0: थीक,
1: हो रही है।
0: और ठीक ठीक तो क्या है, बस आपके प्रोग्रामों की ठंडक पे ये दिन गुजार रहे हैं क्योंकि हालत बड़ी खराब है गर्मी के कारण अपन सब।
1: जी जी तो गर्मी में जो है हम अपना ध्यान किसी और तरफ केंद्रित करके और आनंद ले रहे हैं कि गीतों के साथ में गर्मी हमें कम महसूस हो रही है।
0: हाँ ये तो आपकी बात सही है,
1: जी
0: जैसे हमारा ध्यान आपके प्रोग्राम में रहता है
1: तो गर्मी का एहसास नहीं होता है।
0: जी, और आपके मुझे आपका एक प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है। बात मतलब
1: बात आपकी गीत हमारे
0: गीत आप ऐसा कुछ है ना।

0: तब की गीत हमारे जी
1: जी ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। फोन करके सुने तो खैर है ही अपनी जगह पर। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये हूँ कि आज रिकॉर्डिंग कौन से प्रोग्राम की है।
0: आज फोन करेगी सुने की है।
1: अच्छा तो मैं अपनी पसंद का गाना बताऊँ आप सुनाएंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कब से पूछ रहे हैं आपसे।
1: जी जी
0: बताएं।
1: तो आज देखिए, आज महबूब खान की पुण्यतिथि है। तो मुझे मदर इंडिया फिल्म का गाना सुनवा दें जो मन्ना डे की आवाज में है। और इस गाने में एक बड़ा अच्छा संदेश है। वो गाना है कुछ इस तरह से है कि उमरिया घटती जाए रे
0: जी,
1: उमरिया घटती जाए। इसमें मैडम एक लाइन आती है, काल पड़ा है रोटी का और दुनिया बढ़ती जाए, है ना। तो ये गीत मुझे सुनना है और आपका नाम भी मुझे जानना था, क्योंकि आकाशवाणी भोपाल के सभी अनाउंसरों की आवाज इतनी अच्छी है कि हमें सभी की आवाज एक जैसी ही लगती है।
0: जी, जी बहुत खुशी हुई जानकर कि आप सभी को बिल्कुल समान रूप से देखते हैं और सुनते हैं। और आज आपकी
1: बात, एक बात और मैं बताऊं कि मैं जॉब है मेरा यहाँ पर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, और मैं रहने वाला वैसे भोपाल का ही हूँ, कोटला सुल्तानाबाद का।
0: जी
1: जी,
0: तो आज आपकी बात हो रही है आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका से।
1: अच्छा प्रियंका जी।
0: जी जी, तो विवेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतना अच्छा संदेशात्मक गीत चुना है सुनने के लिए। तो आपकी ये पसंद और ये संदेश आपके माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं आपके साथ, आपके पास और अन्य श्रोताओं के पास।
1: बहुत बहुत नमस्कार, और आप अपना बहुत ध्यान रखें गर्मी में।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, आपसे निवेदन है
0: जी।
1: थैंक यू, नमस्कार
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते।
1: जी दीदी। गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से दीदी मनोज नामदेव बोल रहे।
0: अरे मनोज जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: धन्यवाद दीदी। मैं तो बढ़िया हूँ दीदी, और उम्मीद भी करता हूँ कि आप भी एकदम सही और स्वस्थ होंगी।
0: बिल्कुल, आपकी उम्मीद जो है वो बिल्कुल खरी खरी है ना?
1: बिल्कुल
0: क्या कर रहे हैं मनोज जी इन दिनों, आप बताइए।
1: दीदी, कहें कि अपने शॉप पर काम कर रहे हैं, और इस समय गर्मी भी भीषण पड़ रही है, तो इससे भी बचाव
0: जी,
1: कर रहे हैं कहें कि।
0: नौतपा भी चल रहा है तो और भी गर्मी विशेष है अभी तो इन दिनों में, है
1: बिल्कुल सही आवाज।
0: ना जी। तो अब बताइए, आप अपनी गर्मी से राहत पाने के लिए क्या करते, क्योंकि आपको तो लगभग 8 से 10 घंटा शॉप पर बैठना पड़ता होगा।
1: बिल्कुल दीदी सही है। क्या है दीदी कि जब मैं सुबह शॉप शॉप पे आ जाता हूँ, तो दिन में जैसे कहीं जाना है तो बिल्कुल भी दिन में धूप में निकलने का कोई चांस बिल्कुल नहीं है। अगर इमरजेंसी जैसे कहीं जाना हुआ तो पूरी बहन के कपड़े हुए, और एकदम कान को बांध कर एकदम पूरा पैक होके ही घर से निकलता हूँ मैं। और वैसे तो सुबह शाम जो काम है वो ही सुबह शाम कर लेता हूँ दीदी। और सभी से मैं यही कहता हूँ कि इस धूप से अगर बचना है तो दिन में बिल्कुल ना निकले, और
0: जी,
1: अपने जो छोटे बच्चे हैं और जो अपने बूढ़े माता पिता हैं,
0: बुजुर्ग
1: खास
0: हैं।
1: तौर पे उनका अगर अपन विशेष ध्यान रखें तो कुछ सही है दीदी।
0: जी बिल्कुल, गर्मी में तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम सर्दियों में रखते हैं वैसा ही ध्यान हमें गर्मियों में भी रखना चाहिए। बस तौर तरीके अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हर मौसम का अपना मिजाज होता है, उससे हम मना नहीं कर सकते हैं
1: बिल्कुल दीदी बिल्कुल।
0: जी। तो मनोज जी बताइए, अपनी पसंद तो आपने अभी तक बताई नहीं है।
1: हाँ दीदी पसंद बता दूं, दीदी पसंद है, फिल्म का नाम है दीवाना, उसमें गाना है तेरे दर से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गया कुछ याद रहा, ये है गाने की
0: अच्छा,
1: बोल।
0: पुरानी वाली दीवाना सुनना चाह रहे
1: हाँ
0: हैं।
1: दीदी पुरानी में है ये गीत।
0: अच्छा, जी,
1: हाँ
0: बिल्कुल ठीक
1: कुछ
0: ठीक
1: भूल गया कुछ याद रहा, एक फिल्म और बता दूं अगर ये नहीं मिले तो।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: ये तो क्योंकि मेरे पास सुना है, मैंने आपके केंद्र में कई बार है, और अगर
0: जी
1: आपको कुछ दिक्कत दिखे तो फिर मैं एक और बता दूं
0: जी विकल्प साथ में रहे तो अच्छी बात है।
1: दूसरी
0: बताइए।
1: है, फिल्म का नाम है आवारगी, और उसमें गजल है अल्ताफ राजा जी की आवाज में, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, ये सुनो।
0: जी, चमकते चांद को। तो हमारी कोशिश रहेगी मनोज जी कि हम
1: हाँ
0: यही सुना दें, क्योंकि ईद भी है, ईद का मौका है, तो चमकते चांद
1: बिल्कुल,
0: को सितारा सुना दिया जाए,
1: हाँ शानदार, मजा आ जाएगा
0: है
1: दीदी
0: ना जी।
1: बिल्कुल। और
0: ठीक
1: मैं तो
0: है,
1: यही सोचता हूँ दीदी कि अगर मेरे हिसाब से आप परेशान ना हो ज्यादा तो ठीक है, जो मिल जाएगा आप वो सरवा
0: अरे
1: देना।
0: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी हर पसंद हमारे पास है ना।
1: ये तो
0: लेकिन
1: बिल्कुल सही है।
0: मौके मौके को
1: आकाश
0: देखते हुए हम ये चाहते हैं कि चमकते चांद को
1: जी
0: सितारा हम हमारे जो ईद मनाने वाले हमारे श्रोता
1: जी
0: हैं तो उन्हें भी बड़ी खुशी होगी ये गीत
1: बहुत अच्छी
0: सुनकर,
1: बात,
0: है
1: बहुत अच्छी बात।
0: ना जी।
1: ठीक
0: शुक्रिया मनोज जी, और ऐसे ही फोन करते रहिए, हमसे बात
1: जी,
0: करते
1: धन्यवाद
0: रहिए। नमस्कार
1: दीदी आपको।
0: जी।

0: हेलो,
1: नमस्कार। मैं
0: नमस्कार। अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताइए।
1: मालेगांव से बात कर रहा हूँ, तुलसीराम
0: जी, मालेगांव से, महाराष्ट्र।
1: व्यास। तुलसीराम व्यास, तुलसीराम।
0: अच्छा जी। तो मालेगांव में कैसा सुनाई देता है हमारा प्रसारण आपको?
1: मालेगांव में, मैं महाराष्ट्र में मालेगांव में, यहाँ बहुत अच्छा सुनाई देता है।
0: जी।
1: आकाशवाणी जिस तरह आकाश में अच्छी तरह विराजमान है, उसी तरह सबके दिलों में विराजमान है आकाशवाणी।
0: शुक्रिया
1: आकाशवाणी सबके दिलों में विराजमान है,
0: जी।
1: कहीं भी
0: इसीलिए
1: खड़े रहो आकाशवाणी के आप गीत आराम से सुन सकते हो। और हमारा एक भाई है, 1-1.2 साल का, वो नीमच में रहता है।
0: अच्छा,
1: वो आकाशवाणी से इतना लगाव है उसका
0: जी।
1: कि वो मोबाइल लगता नहीं उसका, लेकिन उन्होंने मेरे से कहा, एक पुराना गाना दिया उन्होंने मुझे
0: जी
1: कि बोले आपका फोन लग जाए, तो उनका नाम है आरसी जैन,
0: जी जी
1: वो पोस्ट मास्टर है रिटायर,
0: जी
1: 1-1.2 साल के हैं।
0: जी तो कौन
1: उनका
0: सा गीत
1: आकाश,
0: उन्होंने
1: हाँ
0: आपको बताया है सुनवा उन्होंने कौन सा गीत बताया आपको सुनवाने के
1: उन्होंने
0: लिए?
1: एक बहुत पुराना गीत बताया है, ये आकाशवाणी को बहुत दिलों से चाहते हैं। उनका गीत है, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम ना देना खुशी देने
0: खुशी
1: वाले,
0: देने वाले,
1: ये
0: जी।
1: आकाशवाणी से कहा है उन्होंने कि
0: अच्छा।
1: मुझे प्यार, उनको प्यार की जिंदगी आकाशवाणी ने दी है। और वो कहते हैं कि मुझे कभी गम न देना, मुझे खुशी देना आकाशवाणी।
0: बिल्कुल, हमारा भरपूर ये प्रयास रहेगा कि हम कभी अपने श्रोताओं को निराश न करें, हम उन्हें कोई दुख न पहुंचाए, कोई गम न पहुंचाए। बिल्कुल, हम आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और इसको पूरी भी करते हैं, है ना। कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने कुछ ऐसी बात कही है कि जो आपकी इस बात से थोड़ा तालमेल रखती है। जब आप कार्यक्रम सुनेंगे तो
1: आपका
0: आप
1: शुभ नाम,
0: जी, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ, प्रियंका बात कर रही हूँ मैं।
1: अच्छा प्रियंका जी, तो
0: जी।
1: ये गीत उनका, उनको सुना देना, तो उनको बहुत खुशी होगी।
0: जी, शुक्रिया आपका।

0: श्रोताओं, कभी कभी सबसे मुश्किल सफर कहीं पहुंचने का नहीं होता, बल्कि उस जगह को छोड़ने का होता है जहां हम अभी हैं। पर शायद यही जिंदगी का इशारा होता है हमें अनजान रास्तों पर भरोसा करना सिखाने का, उस चलती नाव में कदम रखने का जब किनारा अब भी अपना सा लगता है। क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जब हम सुकून से ज़्यादा हिम्मत को चुनते हैं और यकीन करते हैं कि आगे जो है वो हमारे लिए और भी खूबसूरत होगा। तो आज का ये सफ़र कार्यक्रम फ़ोन करे गीत सुने का आपने तय किया था आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका के संग। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: फोन करें गीत सुने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
4: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। देश भर में बारिश औसतन दीर्घकालिक पूर्वानुमान का 90% रहने की संभावना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। वर्ष 2026 से 2030 के बीच वैश्विक औसत तापमान 1.3 से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश ने गेहूं उपार्जन में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। गेहूं उपार्जन के मामले में प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अब तक 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है। देश में जल संरक्षण के कार्य में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 जिला प्रशिक्षण वर्ग में योगाभ्यास किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 में हिस्सा लिया और 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल ब्रिस्टल में भारतीय समय के अनुसार रात 7 बजे से खेला जाएगा।

0: रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला नगमा फिल्म हरजाई से, लता मंगेशकर की आवाज, निदा फाजली के बोल, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोरी वर्मा, दीपक वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा।

इसके साथ ही दीपाली भजक के गाय भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है कलंक फिल्म से, आवाज श्रेया घोषाल और वैशाली भाड़े की। अमिताभ भट्टाचार्य के गीत की धुन बनाई है प्रीतम ने।

कल हो ना हो। लीजिए सुनिए फिल्म से सोनू निगम को, जावेद अख्तर का गीत और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं। प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया और 13 लाख से अधिक किसानों को 23,708 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदने के मामले में प्रदेश देश भर में नंबर एक पर है।
1: मध्यप्रदेश ने अपने सभी प्रकार के किसानों के साथ बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,04,31,000 मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अर्थात खरीदी की गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इतने आश्वस्त करना चाहूंगा, किसान कल्याण के सारे काम सरकार लगातार करती रहेगी।
0: त्रिशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ को आज कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों की 5-5 दिन की रिमांड मांगी, जिसे जज ने मंजूर कर लिया। गिरिबाला सिंह पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। कल 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें भोपाल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्रिशा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। भोपाल में एसटीएफ ने कल रात गांधीनगर के एक मकान में छापा मारकर अवैध कफ सिरप फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और 10 लोगों को हिरासत में लिया। मौके से ऑफ कप ब्रांड की करीब 1.5 करोड़ रुपए की नशीली सिरप, 700 से ज्यादा पेटियां और पैकेजिंग मशीनें जब्त की गईं। मकान मालिक फरार है और एसटीएफ पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि फैसला सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाया जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि देरी से याचिकाकर्ताओं को गंभीर नुकसान हो सकता है। जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाकर अपलोड करना जरूरी होगा। रीवा में आज जल जीवन मिशन के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। सिरमौर चौराहा स्थित कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद जनार्दन मिश्रा ने की। कार्यशाला का मकसद ग्राम पंचायतों को नल जल योजनाओं का संचालन सौंपना और सरपंचों तथा सचिवों के साथ अनुबंध प्रक्रिया पूरी करना था। भारत के लिए पेट्रोलियम लेकर आ रहा तेल टैंकर निसोस केरोस हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है और उसके 3 जून तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। ये जहाज 21 मई को शारजाह से रवाना हुआ था और आज सुबह उत्तरी अरब सागर में देखा गया। ईरान ने इस महीने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क वसूलने की घोषणा की है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने अवैध बताया है। प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का शेड्यूल राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 24 जून से शुरू होकर 28 जून तक चलेंगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 12:30 बजे तक आयोजित होंगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम का अजब रंग देखने को मिल रहा है। एक तरफ खजुराहो में 46.5 डिग्री तापमान के साथ भीषण गर्मी का कहर है तो दूसरी तरफ ग्वालियर और मुरैना में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर समेत 6 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट और 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल से राहत मिलने के आसार है। वहीं 30 मई से 1 जून के बीच प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले के आष्टा में आगामी जून माह में 2 से 8 जून तक राष्ट्रीय स्तर का संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बैतूल में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता।

0: क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल

ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि यह आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।

0: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
1: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
1: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला,

0: गद्दी पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश है जहर फिल्म के इस गीत की, जिसको आवाज दी है श्रेया घोषाल ने। गीत सईद कादरी का और संगीत रूप कुमार राठौर का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

सोनू के टीटू की स्वीटी लीजिए सुनिए इस फिल्म से अरिजीत सिंह और रोचक कोहली को, कुमार का गीत और रोचक कोहली का संगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगली फरमाइश राजी फिल्म की, जिसे आवाज दी है हर्षदीप कौर, विवाह सराफ और शंकर महादेवन ने, गुलजार का गीत और शंकर एहसान लॉय का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई, इकबाल अहमद, नुरेशा बेगम कापसीदा नई दिल्ली से, नशरीन आज़ाद, आमना आसमा और इमरान अहमद। साथ ही कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली।

अगली फरमाइश भेजी है विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह से ओम प्रकाश नेमा, श्रीमती किरण नेमा, आकाश, विकास, नंदिनी एवं समस्त नेमा परिवार, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सबने सुनना चाहा है माई नेम इज खान फिल्म का ये नगमा शफकत अमानत अली की आवाज़ में, निरंजन एंगर का गीत और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

कुछ कुछ होता है। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा उदित नारायण, अलका याग्निक और मनप्रीत अख्तर की आवाज़ों में, समीर का गीत और जतिन ललित का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, सिद्धांत प्रिंस और एकांश गवाणकर। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये नगमा।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एकजुट हैं। प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104,22,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया और 13 लाख से अधिक किसानों को 23,708 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। प्रीशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ को आज कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों की 5-5 दिन की रिमांड मांगी गई, जिसे जज ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। गिरिबाला सिंह पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। भोपाल में एसटीएफ ने कल रात गांधीनगर के एक मकान में छापा मारकर अवैध कफ सिरप फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि फैसला सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाया जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा है कि देरी से याचिकाकर्ताओं को गंभीर नुकसान हो सकता है। और रीवा में आज जल जीवन मिशन के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। सिरमौर चौराहा स्थित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद जनार्दन मिश्रा ने की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:30, रात 8:15 और रात 9:45। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:00। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। सुर्खियों में ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:00। रात 9:30 खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे मोहम्मद सोहेब की वार्ता, कौन बनेगा IPL 2026 का विजेता। 10:00 आनंद लीजिएगा आपकी फरमाइश का। और 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे पूर्वी मुखर्जी का ख्याल गायन, राग होगा भाव कौस। ये थे हमारे केंद्र से शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव 188.32 मीटर पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। DTH पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत सुगम संगीत।

अंत में सुनिए लोक संगीत के कार्यक्रम में मथुरा प्रसाद सुमन का गाया ये गीत।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे दीपाली भुजक के गाए भजन। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान है।

गीत कहानी प्रार्थना हम सब मिलकर गाएंगे। गीत कहानी प्रार्थना हम सब मिलकर

डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। पहला गीत लोफर फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अनुराग फिल्म से सुनिए लता मंगेशकर को, आनंद पक्षी का गीत और एस डी बर्मन का संगीत।

और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मेरे जीवन साथी फिल्म का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी का गीत और आरडी वर्मन का संगीत। इसके बाद आप सुनेंगे अमर प्रेम फिल्म का ये नगमा जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण, जिसमें हम सुनवा रहे हैं चित्रपट संगीत। अब सुनिए लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में इज्जत फिल्म का ये नगमा। उसके बाद आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में वासना फिल्म का गीत।

0: इसके साथ ही चित्रपट संगीत संपन्न हुआ। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। 3:58 हुए हैं, वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष गेहूं उपार्जन में अपने सभी लक्ष्य हासिल करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। प्रदेश में किसानों से अब तक रिकॉर्ड 1.4 करोड़ मेट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को 2,585 रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रति क्विंटल 40 रूपये बोनस का लाभ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं। भारत के लिए पेट्रोलियम लेकर आ रहा तेल टैंकर निसोस केरोस हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है। उसके 3 जून तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। ये जहाज 21 मई को शारजाह से रवाना हुआ था, आज सुबह उत्तरी अरब सागर में देखा गया। प्रदेश में कक्षा 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा का शेड्यूल राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 24 जून से शुरू होकर 28 जून तक चलेंगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होंगी। मंत्रालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन का गायन 1 जून को प्रातः 10:15 बजे किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने वल्लभ भवन, विंध्याचल और सतपुड़ा भवन के सभी अधिकारी कर्मचारियों को गायन में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। और मौसम विभाग ने आज ग्वालियर समेत 6 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट और 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत नीलकमल फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़, साहिल लुधियानवी का गीत और रवि का संगीत।

और अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में ब्रह्मचारी फिल्म का ये नगमा, हसरत जयपुरी का गीत और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: मीडियम वेव 188 यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष गेहूं उपार्जन में अपने सभी लक्ष्य हासिल करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। प्रदेश में किसानों से अब तक रिकॉर्ड 1.4 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को 2,585 रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 40 रूपये बोनस का लाभ दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है। सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का शेड्यूल राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 24 जून से शुरू होकर 28 तक चलेंगी और सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होंगी। और पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहारा में कजाकिस्तान 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान हमारे छतरपुर केंद्र का है।

सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको सिर्फ एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के विचार मिलेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इसी सुविचार के साथ युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा श्रोताओं का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूं आज आपके साथ आपकी अपनी मित्र शिल्पी अग्रवाल, तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। साथियों, आज के कार्यक्रम में मैं लेकर आई हूँ कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं, वार्ता और साथ ही आपके मनोरंजन के लिए गीत संगीत। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की पहली चर्चा से, जिसका विषय है ड्रग्स एवं नशे का सेवन ना करें। साथियों, आज के समय में नशा समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। चाहे वह शराब हो, तंबाकू हो, गुटखा हो या फिर ड्रग्स, हर प्रकार का नशा व्यक्ति के शरीर, मन, परिवार और भविष्य को नुकसान पहुँचाता है। शुरुआत अक्सर शौक या दोस्तों के दबाव में होती है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत लत बन जाती है। नशे का सबसे बड़ा असर युवाओं पर पड़ रहा है। जो युवा देश का भविष्य हैं, वे नशे की गिरफ्त में आकर अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और करियर को बर्बाद कर रहे हैं। नशा व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को कम करता है और कई बार अपराध तथा हिंसा की ओर भी ले जाता है। साथियों, नशा करने से फेफड़े, लीवर, दिल और दिमाग प्रभावित होते हैं। कई बार कैंसर, हार्ट अटैक या मानसिक बीमारी जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। ड्रग्स एवं नशे के सेवन से गुस्सा, तनाव, डर, अवसाद और याददाश्त कमजोर की समस्या बढ़ सकती है। इससे कैरियर व हमारे काम पर भी असर पड़ता है। साथियों, ड्रग्स एवं नशे के सेवन से झगड़े, आर्थिक परेशानी और पारिवारिक कलह जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। एक नशे की लत व्यक्ति को सामाजिक रूप से भी कमजोर बना देती है। कई परिवार टूट जाते हैं और युवाओं का उज्ज्वल भविष्य अंधकार में चला जाता है। साथियों, ड्रग्स एवं नशे का सेवन ना करें। इसके लिए अपना खाली समय उन गतिविधियों में बिताएं जो आपकी पसंद की हों, जैसे कि पेंटिंग, खेल, संगीत या किताबें पढ़ना। नियमित रूप से व्यायाम और योगा करने से शरीर में प्राकृतिक रूप से एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ता है, जिससे नशे की तलब कम होती है। साथियों, नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनका सामना साहस, परिवार के सहयोग और सकारात्मक सोच से करना चाहिए। माता पिता, शिक्षक और समाज की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों और युवाओं को सही मार्गदर्शन दें। साथियों, ये तो हमने छोटी सी चर्चा की ड्रग्स एवं नशे का सेवन न करें, और अब आपका मनोरंजन करवाते हैं इस मधुर गीत के साथ।

0: साथियों, अभी आपने सुना मन फिल्म का ये मधुर गीत, जिसमें आवाज थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीतकार थे समीर और संगीतबद्ध किया था संजीव दर्शन ने। साथियों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में ले चलते हैं आपको एक और चर्चा की ओर। साथियों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के सच्चे मसीहा और भारतीय राजनीति में सादगी एवं ईमानदारी के प्रतीक चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर चर्चा करेंगे। चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि हर साल 29 मई को मनाई जाती है। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि वे उस किसान की आवाज थे जो खेतों में पसीना बहाता है और गांव में बसता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों और ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए समर्पित किया। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर वर्ष 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गाँव में हुआ था। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े होने के कारण उन्होंने किसानों की समस्याओं को बहुत करीब से देखा और समझा। यही कारण था कि आगे चलकर उनकी राजनीति का केंद्र गांव, किसान और कृषि बने। उन्होंने वर्ष 1923 में आगरा कॉलेज से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर 1925 में इतिहास में कला स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की। साथियों, चौधरी चरण सिंह का स्पष्ट विचार था कि जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक देश का विकास अधूरा रहेगा। उन्होंने किसानों को आर्थिक व सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। साथियों, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन लागू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कानून ने लाखों किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाई और उन्हें भूमि का अधिकार प्राप्त हुआ। वे बड़े उद्योगों की अंधाधुंध नीतियों के बजाय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को अधिक महत्व देते थे। वे अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। सत्ता के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी उनके व्यवहार में विनम्रता व ईमानदारी बनी रही। साथियों, वर्ष 1979 में वे भारत के प्रधानमंत्री बने।
1: साथियों, चौधरी चरण सिंह जी का कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो,
0: उनके सिद्धांत व विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनका जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। पहला, राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए, सत्ता का नहीं। दूसरा, किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि राष्ट्र की रीढ़ है। तीसरा, सादगी, ईमानदारी और नैतिकता ही सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: साथियों, चौधरी चरण सिंह जी का निधन 29 मई सन 1987 को हो गया था। उनकी समाधि स्थल, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, जिसे किसान घाट के नाम से जाना जाता है, भारत माता के ऐसे महान सपूत को हमारा सत सत नमन।
0: साथियों, ये तो मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी आपको चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर, और अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए ले चलते हैं आपको एक वार्ता की ओर, जिसका विषय है गर्मी में जल संरक्षण। वार्ताकार हैं भूमिका चतुर्वेदी।
2: जल प्रकृति का अनमोल उपहार है। प्रकृति पर जीवन का अस्तित्व जल के बिना संभव नहीं है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे तथा सभी जल जीवधारी जल पर निर्भर करते हैं। जल केवल पीने के लिए ही नहीं आवश्यक है, बल्कि कृषि, उद्योग, बिजली उत्पादन, सफाई, भोजन निर्माण तथा दैनिक जीवन के लगभग हर कार्य के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जल को जीवन कहा जाता है। गर्मियों का मौसम आते ही जल का आवश्यक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस मौसम में तापमान बढ़ने के लिए नदियाँ, तालाब और कुएं सूखने लगते हैं। भूजल स्तर नीचे चला जाता है तथा लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। गांवों में महिलाएं कई किलोमीटर दूर तक जाकर पानी लाती हैं। शहर में पानी की सप्लाई कम हो जाती है और लोगों को टैंकर पर निर्भर होना पड़ता है। कई स्थानों पर जल संकट गंभीर हो जाता है। पीने के पानी के लिए संघर्ष की स्थिति बन जाती है। आज बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगीकरण और जल के अत्यधिक दुरुपयोग ने समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। यदि समय रहते जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में स्थिति भयावह हो सकती है। इसलिए गर्मियों में जल संरक्षण केवल आवश्यकता ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। जल का महत्व। जल मानव जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। बिना भोजन के मनुष्य कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल से बना होता है। जल शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है तथा शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करता है। जल का उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। घरेलू उपयोग, पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने, नहाने और सफाई के लिए आवश्यक है। खेती पूरी तरह जल पर निर्भर करती है। फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी चाहिए। कारखानों में मशीनों को ठंडा करने के लिए, वस्तुएं बनाने तथा सफाई के लिए जल का उपयोग होता है। विद्युत उत्पादन, विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण संतुलन, नदियाँ, झीलें तथा समुद्र प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के लिए भी जल आवश्यक है। गर्मियों में जल संकट के कारण, गर्मियों में पानी की कमी कई कारणों से उत्पन्न होती है। तापमान में वृद्धि, गर्मी के मौसम में सूर्य की तीव्रता, गर्मी के कारण जल तेजी से वाष्पित होता है। इससे तालाब, नदियाँ और झीलें सूखने लगती हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन, लोग जरूरत से ज्यादा पानी निकालने लगते हैं। बोरवेल और ट्यूबवेल में लगातार उपयोग से भूजल स्तर नीचे चला जाता है। वर्षा की कमी, यदि वर्षा कम होती है तो जल स्रोतों में पर्याप्त पानी नहीं भर पाता। बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ने से पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। वनों की कटाई, पेड़ वर्षा लाने में सहायता करते हैं। पेड़ों की कटाई से वर्षा कम होती है और जल संकट बढ़ता है। जल प्रदूषण, नदियाँ और तालाबों में कचरा तथा रसायन डालने से पानी प्रदूषित हो जाता है। जल की बर्बादी, लोग नल खुला छोड़ देते हैं तथा आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करते हैं। जल संरक्षण का अर्थ, जल संरक्षण का अर्थ है जल का सोच समझकर उपयोग करना और उसे व्यर्थ होने से बचाना। इसका उद्देश्य भविष्य के लिए पानी बचाना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना न करना पड़े। जल संरक्षण केवल सरकार का नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। गर्मियों में जल संरक्षण की आवश्यकता, गर्मी के मौसम में पानी की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पीने के पानी की उपलब्धता, यदि पानी बचाया जाएगा तो सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मिल सकता है। कृषि की सुरक्षा, किसानों को सिंचाई के

0: सुरक्षित होगा। जल संरक्षण के उपाय। वर्षा का चयन। वर्षा के पानी को एकत्र करके उपयोग करना वर्षा जल चयन कहलाता है। यह जल संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। लाभ। भूजल स्तर बढ़ता है, पानी की कमी दूर होती है, भविष्य के लिए जल संग्रहित होता है। नलों को बंद रखना। कई लोग पानी का उपयोग करने के बाद नल खुला छोड़ देते हैं, इससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है, इसलिए उपयोग के बाद नल तुरंत बंद करना चाहिए। रिसाव रोकना। टूटी हुई पाइपलाइन और टपकते नलों से बहुत पानी बर्बाद होता है, इन्हें तुरंत ठीक करना चाहिए। बाल्टी से स्नान करना। शॉवर की तुलना में बाल्टी से नहाने पर कम पानी खर्च होता है। पेड़ लगाना। पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं। अधिक पेड़ लगाने से पर्यावरण संतुलित रहता है। जल पुन चक्रण। रसोई, कपड़े धोने तथा अन्य कार्यों में उपयोग किए गए पानी को पौधों में डालने या सफाई के कार्य में पुनः उपयोग किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई। कृषि में ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाने से कम पानी में अधिक सिंचाई संभव होती है। लोगों को जागरूक करना। जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। स्कूलों, कॉलेजों तथा सामाजिक संस्थाओं को अभियान चलाने चाहिए। विद्यार्थियों की भूमिका। विद्यार्थी समाज का भविष्य हैं, वे जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पानी व्यर्थ करना, दूसरों को जागरूक करना, स्कूलों में अभियान चलाना, पेड़ लगाना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना। सरकार की भूमिका। सरकार को जल संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, जैसे नए तालाब और बांध बनाना, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करना, जल प्रदूषण रोकना, जागरूकता अभियान चलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुविधाएं बढ़ाना। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट। गांवों में गर्मियों के दौरान जल संकट अधिक गंभीर होता है। कई गांव में महिलाएं दूर दूर से पानी लाती हैं, पशुओं को भी पानी नहीं मिल पाता, खेती प्रभावित होती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इस समस्या के समाधान के लिए तालाबों का निर्माण, कुओं की सफाई तथा वर्षा जल संचयन आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में जल संकट। शहरों में बढ़ती आबादी के कारण पानी की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। बड़ी बड़ी इमारतें और उद्योग भूजल का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप कई शहरों में गर्मियों में पानी की भारी कमी हो जाती है। जल संरक्षण से पर्यावरण संतुलित रहता है। यदि पानी की कमी होगी तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। पानी बचाओ, भविष्य बचाओ। बूंद बूंद से सागर भरता है। यदि जल नहीं रहेगा तो कल नहीं रहेगा। जल है तो कल है, हर बूंद कीमती है। जल संरक्षण अपनाओ, भविष्य सुरक्षित बनाओ। पानी की बर्बादी रोको। गर्मियों में जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि हम आज पानी की बचत नहीं करेंगे तो भविष्य में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी आदतें अपनानी चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जल है तो जीवन है।
1: साथियों, अभी आपने सुनी वार्ता गर्मी में जल संरक्षण। वार्ताकार थी भूमिका चतुर्वेदी। साथियों, हमारी आखिरी चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस। हर वर्ष 29 मई को यह दिवस उन बहादुर शांति रक्षकों के सम्मान में मनाया जाता है जो दुनिया के विभिन्न संघर्षरत क्षेत्रों में शांति और मानवता की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। यह दिन उन वीर सैनिकों, पुलिस कर्मचारियों और नागरिक कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने विश्व शांति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की शुरुआत 29 मई वर्ष 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में शांति स्थापित करना है जहां युद्ध, हिंसा और अस्थिरता के कारण आम जनजीवन प्रभावित होता है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक विभिन्न

अन्य देशों से आते हैं और बिना किसी भेदभाव के मानवता की सेवा करते हैं। नागरिकों की सुरक्षा करने, राहत कार्यों में सहायता देने तथा शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत का योगदान संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हमारे देश के हजारों सैनिकों ने दुनिया के अनेक देशों में शांति स्थापना के कार्यों में भाग लिया है। भारतीय सैनिक अपनी बहादुरी, अनुशासन और मानवीय सेवा के लिए विश्व भर में सम्मानित किए जाते हैं। कई भारतीय शांति रक्षकों ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। श्रोताओं, शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं है, बल्कि यह मानवता, सहयोग और अपनी विश्वासी का प्रतीक है। आज के समय में जब दुनिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, तब संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, वे हमें यह संदेश देते हैं कि संवाद, सहयोग और सहिष्णुता से ही स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम, सेमिनार और श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए जाते हैं। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस 2026 का मुख्य विषय है शांति में निवेश करें, इन्वेस्ट इन पीस। यह विषय शांति सैनिकों को उनके महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करने हेतु निर्णायक कार्यवाही की आवश्यकता पर जोर देता है। साथियों, ये तो हमने आपको जानकारी दी अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस पर, और अब आपके मनोरंजन के लिए सुनवाते हैं लव ब्रेकअप जिंदगी से ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आपने सुना लव ब्रेकअप जिंदगी से ये मधुर गीत, जिसमें आवाज थी सलीम मर्चेंट की, गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीतबद्ध किया था सलीम सुलेमान ने। और साथियों, अब वक्त हो चला है आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना का। BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है अप्रेंटिस, पदों की संख्या है 5000, आयु सीमा है न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि है 8 जून 2026। शैक्षणिक योग्यता किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.bankin पर विजिट करें। साथियों, ये तो रही आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, तो अनुमति दीजिए अपने मित्र शिल्पी अग्रवाल को। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे छतरपुर केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, समय है छोटे से अंतराल का।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: बीप, तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लान।

0: कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत तुमको मेरी कसम फिल्म से। सुर और संगीत प्रतीक वालिया के, शब्द रचना विक्रम भट्ट की।

इस गीत के बाद लीजिए सुनिए सरगम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

द डिप्लोमेट। अब इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। वरुण जैन, रोमी और अनुराग सेकिया ने इस गीत को गाया है। कौसर मुनीर के लिखे गीत को संगीत दिया है अनुराग सेकिया ने।

और आइए अब सुनते हैं अमानत फिल्म का गीत, साहिर का लिखा हुआ। रवि के संगीत निर्देशन में इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत तेरे इश्क में फिल्म से। फहीम अब्दुल्ला ने इस गीत को गाया है, इरशाद कामिल ने लिखा है और संगीतकार हैं AR रहमान।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान ऐप के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। इस डिजिटल एप्लीकेशन का उद्देश्य देशभर के स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू मुक्त बनाना है। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91.97 लाख करोड़ रुपए हो गई है। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश और स्वर्ण तथा विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। CBSE ने घोषणा की है कि उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज पोर्टल 1 जून 2026 से खुलेगा, जबकि एक पारदर्शी त्रुटि मुक्त प्रक्रिया और उच्च मूल्यांकन मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस साल गेहूं उपार्जन में अपने सभी लक्ष्य हासिल करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। और IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
3: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, वे खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
3: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
3: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
3: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
3: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
3: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
3: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
3: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
2: जी,
3: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
2: अजीत जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
3: जी, वो तो है।
2: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
3: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
2: जी,
3: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
2: बिल्कुल।
3: आइए बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
2: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का।
3: जी,
2: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
3: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
2: जी,
3: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
2: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
3: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
3: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
4: संध्या को हम खेलने जाते,
3: मित्रों संग आनंद मनाते,
4: मित्रों संग आनंद मनाते,
3: कभी दौड़ना और उछलना,
4: कभी दौड़ना और उछलना,
3: कभी गेंद के खेल खेलना,
4: कभी गेंद के खेल खेलना,
3: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
4: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
3: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
4: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
3: गिल्ली डंडा सबको भाता,
4: गिल्ली डंडा सबको भाता,
3: सतोलिया भी मजा दिलाता,
4: सतोलिया भी मजा दिलाता,
3: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
4: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
3: या हंस हंस के बातें करना,
4: या हंस हंस के बातें करना,
3: जब अंधेरा होने लगता,
4: जब अंधेरा होने लगता,
3: सबको कुछ डर लगने लगता,
4: सबको कुछ डर लगने लगता,
3: तब हम घर को वापस आते,
4: तब हम घर को वापस आते,
3: कल खेलेंगे यह कह जाते,
4: कल खेलेंगे यह कह जाते।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे की जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक महत्व

0: कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा राष्ट्रपति के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर
2: मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
2: हम तैयार हैं। लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है, यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
4: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायु सेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान, सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर

0: अंकलों पर हमला करना होगा।
1: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
2: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बह चुका। हार नहीं मानी वो। भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
1: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
2: चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
1: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
0: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
1: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
2: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
1: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
3: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आगे

0: प्रतिज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आपने सुना एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत स्काई फोर्स फिल्म से है। विशाल मिश्रा ने इस गीत को गाया है। इरशाद कामिल के लिखे गीत को संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नादानिया फिल्म का गीत। सचेत टंडन, असीस कौर और सचिन जिगर की आवाज़ें हैं। अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं सचिन जिगर।

रिफ्यूजी फिल्म का गीत सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। जावेद अख्तर ने गीत लिखा है और इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम के आखिरी में सुनिए आज़ाद फिल्म का गीत। अमित त्रिवेदी और मृणाल जैन की आवाज़ें, अमिताभ भट्टाचार्य की शब्द रचना और संगीतकार अमित त्रिवेदी।

0: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
1: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना

0: बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कांग खई शिंग और अरुण ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण के लिए, तो आइए पहले आज के शेष कार्यक्रम हम आपको बता दें। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर खेल जगत में हम सुनवाएंगे राहुल गढ़वाल की वार्ता, कौन होगा आईपीएल 2026 का विजेता। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का समय रहेगा रात 10 बजे। 10:30 पर राग रजनी में आज हम आपको सुनवाएंगे राग भाव कौंस में पूर्वी मुखर्जी का ख्याल गायन।

आज शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम सभा में आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर आप सुनेंगे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुरमई सवेरा ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। लोक संगीत में 9:15 पर सुनिए रामदीन कुशवाहा और साथियों के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनेंगे झलकी लॉटरी खुल गई। इस झलकी के लेखक हैं अशोक बुलानी, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। जिले की चिट्ठी हम आपको सुनवाएंगे 10:00। 10:05 पर होगा फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में 10:30 पर आप सुनेंगे पुतुर देवदास जोशी का वायलिन वादन। राग होगा तोड़ी।

ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसमें 11 बजे सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आपकी फरमाइश का समय है 12 बजे और दोपहर 2:30। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत 12:30 पर सुनिए सिसकियां धारावाहिक की चौथी कड़ी। हमारे रीवा केंद्र की प्रस्तुतियों में सुनेंगे दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। ये सभी प्रस्तुतियां रीवा केंद्र की होंगी।

कल शाम 7:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। सुर्खियों में यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 8:00। 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम युवा भारती और 10:00 सुनवाएंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसमें कल आप सुनेंगे स्मिता मोक्षी का ख्याल गायन। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम भोपाल से प्रसारित किया जाएगा। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने पर 5 राष्ट्रीय पहलों की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पेपर लीक दुर्भाग्यपूर्ण, सीबीआई करेगी जांच और दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। केंद्र सरकार ने कहा, देश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं, रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चालू। और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने जम्मू पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल पूरे होने पर 5 राष्ट्रीय पहलों की शुरुआत की और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग आज 182 देशों में मौजूद है और पूरी मानवता को जोड़ने का काम कर रहा है। वहीं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने कहा कि आज की दुनिया में ध्यान विलासिता नहीं बल्कि जरूरत बन गया है और जीवन में ज्ञान, ध्यान और संगीत हमेशा साथ रहने चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी योग्य छात्र का भविष्य परीक्षा माफियाओं की वजह से बर्बाद हो। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करेगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। श्री प्रधान ने कहा,
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में कहा है कि इस चूक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई की, जिसमें एनटीए को हटाकर उसकी जगह एक मजबूत और स्वायत्त संस्था बनाने की मांग भी शामिल है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा है और अब अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। केंद्र सरकार ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चल रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में अभी रोजाना 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है।

0: रहा है जो अब तक का सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा किसी भी एलपीजी वितरक से गैस की कमी की कोई शिकायत नहीं आई है।
1: मैं आप सभी के द्वारा सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने महज 4 दिनों में पाकिस्तान को युद्ध विराम की अपील करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने इस अभियान को भारत के सैन्य इतिहास की अभूतपूर्व सफलता बताते हुए कहा कि ये तीनों सेनाओं के उत्कृष्ट तालमेल और आधुनिक सैन्य क्षमता का जीवंत उदाहरण था। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक विशेष स्मारक प्रकाशन का भी विमोचन किया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित रहे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज माता वैष्णो देवी धाम में दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि राज्य सरकार का एक दल यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने आया है। डॉ. यादव ने कहा कि महाकाल मंदिर, ओमकारेश्वर और भूशाला जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए देश के बड़े तीर्थस्थलों से सीख ली जा रही है। पीशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सास गिरिबाला सिंह और पति समर सिंह को 5-5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। गिरिबाला सिंह पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। कल 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें भोपाल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ट्विशा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष से आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। भोपाल में एसटीएफ ने कल रात गांधीनगर इलाके में एक मकान पर छापा मारकर अवैध कफ सिरप बनाने के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। यहां ऑफ कफ नाम की नशीली सिरप बनाकर बाजार में सप्लाई की जा रही थी। पूरे सेटअप की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रात 12 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई सुबह 3 बजे तक चली, जिसमें 700 से ज्यादा पेटियां, बोतलें और पैकेजिंग मशीनें जब्त की गई हैं। 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104,22,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया और 13 लाख से अधिक किसानों को 30,708 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदने के मामले में प्रदेश देश भर में नंबर एक पर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में 40 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर लग चुके हैं, जिनमें प्रदेश के 1,21,000 से अधिक घर शामिल हैं। प्रदेश में इन संयंत्रों से 456 मेगावाट से ज्यादा स्वच्छ सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ये योजना भारत को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जबलपुर शहर के लोगों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि NHAI करीब 3,540 करोड़ रुपए की लागत से 114 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड बना रहा है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने आज बताया कि ये 4-लेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर खासतौर पर भारी और लंबी दूरी के वाहनों को शहर के बाहर से रास्ता देगा, जिससे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छिंदवाड़ा के खोखरा वाटरफॉल पर कल बुधवार को हुए हादसे में डूबे दोनों किशोरों के शव बरामद कर लिए गए। हादसे में एक शव गुरुवार को और दूसरा शव 36 घंटे बाद आज गहरे पानी से निकाला गया। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त वाटरफॉल के पास सेल्फी लेते वक्त संतुलन बिगड़ने से गहरे पानी में चले गए थे। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से अपनी सेहत का ख्याल रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से खूब पानी पीने, बच्चों को हाइड्रेट रखने और घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में।

बीजों का अवैध भंडारण जब्त किया। झाबुआ में आईटीआई में प्रवेश के इच्छुक छात्र 30 जून तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। देवास में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कुओं, तालाबों और नदियों की सफाई और गहरीकरण का काम जारी है। नर्मदापुरम में पवारखेड़ा में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगरमालवा के नलखेड़ा में विधायक भैरव सिंह परिहार ने 11 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। गुना में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। निवाड़ी में भाजपा जिला कार्यालय में मोदी जी के 12 साल बेमिसाल विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। शिवपुरी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 35 दिवसीय निःशुल्क ब्यूटिशियन प्रशिक्षण में 31 महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के केंद्रीय चिकित्सालय में अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन पर सेमिनार और मॉकड्रिल आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनवे बारे हमारे सभी भैयारन को कल्पना बहन की राम राम और करते हैं स्वागत आज के चौपाल कार्यक्रम में। और भैयारो बताओ कैसे का हालचाल है आप और उनके। हम जानते हैं कि अबे देखो चल रहे हैं नौतपा और जे नौतपा में खूब भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब नौतपा तो है गए ठंडे और खूब पानी बरसो तो तन मन को नेक चैन मिल रहा है। तो भैया और देखो सबसे पहले बता देवे कि आज के चौपाल कार्यक्रम में का है। तो भैया और देखो बहुत ही उमदा भेंट वार्ता है सुरक्षित अनाज को भंडारण और कछु चर्चा के विषय हैं और नौने नौने लोकगीत सुनवा है और अब चर्चा करते हैं आपकी और हमारी बातचीत से। तो भैया और देखो जे बात तो सोलह आना सांची है कि हर एक जनमानस को और मोड़ा मोड़े इनको शिक्षित हो वो बहुत ही जरूरी है। शिक्षा एक वो हथियार है जो अस्त्र शस्त्र है जिसे सभी जने आगे बढ़ सकते हैं और हर एक काम में सफल है सकते हैं। तो भैया और देखो ऐसी ही योजना हमारी सरकार ने चलाई है। तो भैया हो देखो आज बात करेंगे पीएम इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम के बारे में। तो भैया और देखो यह एक ऐसा प्रोग्राम है जी को उद्देश्य बच्चों और युवाओं को सीखने की क्षमता को बढ़ाना है और शिक्षा को अधिक रोचक और सरल और उपयोगी बनाना है। तो भैया और देखो आज के टाइम में केवल किताबों को ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है बल्कि बच्चन को नई तकनीक रचनात्मक सोच समस्या समाधान और व्यवहारिक ज्ञान की भी जरूरत होती है। तो भैया और देखो पीएम इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम इन्हीं बातन पर विशेष ध्यान देता है और इसके माध्यम से विद्यार्थी को खेल खेल में सीखवे प्रयोग करवे और नई नई चीज़न को समझवे को अवसर मिलाता है। और भैया और देखो ये कार्यक्रम में आधुनिक शिक्षण विधियों को उपयोग करो जाता है जैसे मोड़ो मोड़ी पढ़ाई लिखाई

पढ़ाई में ज़्यादा रुचि लेते हैं, जैसे समूह चर्चा गतिविधियाँ, विज्ञान प्रयोग और डिजिटल साधनों के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाओ जाते हैं। तो भैया और देखो, इसे बच्चन को आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और वे अपनी प्रतिभा को बेहतर ढंग से विकसित कर पाते हैं। तो भैया और देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। काहे से कि भैया हो देखो, इन्हें आधुनिक शिक्षा और नई तकनीक को जोड़ता है और साथ ही शिक्षक भी नए शिक्षण तरीकों को प्रशिक्षण प्राप्त करके विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन देते हैं। तो भैया और देखो, शिक्षा ही विकास को सबसे बड़ा मजबूत आधार है। भैया और यदि हमारे बच्चे नई सोच, ज्ञान और कौशल से सशक्त होंगे तो वे अपने परिवार, गांव, देश, नगर, मोहल्ला के उज्जवल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो भैया और देखो, ऐसे ही नवाचार आधारित शिक्षा कार्यक्रमों को अपनाएं और अपने नौनिहालन को नियमित रूप से सीखने के लिए प्रेरित करें। भैया और देखो, चर्चा तो आगे और भी करें हैं, पहले कछु हो जाए मनोरंजन, तो सुनते जो नौ नौ सौ लोकगीत राजू पटेल और साथी के स्वर में।

0: भैया और देखो, ब्राह्म के बाद स्वागत है फिर से चौपाल कार्यक्रम में। भैया और देखो, अब अपन चर्चा कर रहे हैं कि वैज्ञानिक विधि से अनाज भंडारण के बारे में। तो भैया और देखो, हमारे देश एक कृषि प्रधान देश है, जो हमारे भैया हरे साल भर मेहनत करके अनाज पैदा कराते हैं। यदि फसल की सही तरीके से देखो भंडारण नहीं करी जाए तो देखो कीट, चूहे, नमी और फफूंद के कारण काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो भैया और देखो, वैज्ञानिक विधि से अनाज भंडारण करवो बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले भैया और देखो, भंडारण से पहले अनाज को अच्छी तरह से सुखा लेवें। अगर नमी रही तो देखो फफूंद लग सकता है। और ऐसे ही भैया देखो, भंडारण के लिए साफ सूखी और हवादार जगह को चुने और गोदाम या फिर भंडारण कक्ष की सफाई पहले से कर लेवें। दीवार और फर्श की जो भी दरारें हैं बिना बंद कर देवें ताकि चूहे भीतर ना आ सकें। और भैया देखो, अनाज को जमीन पर सीधे ना रखें, बोरियों को लकड़ी के पटे या मचान पे रखें जहाँ से नमी को प्रभाव ना पड़े, और बोरियों को दीवार से थोड़ी दूरी पर रखने चाहिए जहाँ से हवा को संचार बनो रहे। और भैया देखो, कीटों से बचाव के लिए भंडारित अनाज को समय समय पे देखत रहें, और ज़रूरत पड़े पे कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित कीटनाशक को प्रयोग करें। तो चूहे की रोकथाम के लिए चूहेदानी को उपयोग करें। तो जई तरह से भैया और वैज्ञानिक तरीके से अनाज को भंडारण करके हम फसल की गुणवत्ता बनाए रख सकते हैं और नुकसान कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया और देखो, जई संबंध में आज सुनते हैं एक नौनी सी भेंट वार्ता, जाको विषय है सुरक्षित अनाज भंडारण, जाकी जानकारी देंगे डॉक्टर श्रद्धा परमार, और उनसे बातचीत करेंगे श्री सोहन सिंह। तो चले अपन सुनते हैं जो नौनी सी जानकारी।
1: किसान भाइयों, फसल उत्पादन करते हैं, फसल उत्पादन से ज्यादा जरूरी होता है कि हमने जो अनाज उगाया है उसको सुरक्षित भंडारण करने का। इस समय हमारे किसान भाई अपने उत्पादित किए हुए अनाज को किस तरह भंडारित करें जिससे हमारा अनाज अधिक समय तक सुरक्षित रह सके, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं डॉक्टर श्रद्धा परिहार। डॉक्टर साहबा, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहबा, जहाँ पर हमारे किसान भाइयों ने अनाज उत्पादित करके इकट्ठा किया हुआ है और कुछ तो जहाँ पर ज़रूरतें होती हैं तो वो बेच देते हैं, क्यों कार्य हैं वो भी संपादित करने होते हैं, लेकिन कुछ अनाज बच जाता है या बीज के लिए हमारे किसान भाई भंडारित करके रखते हैं भविष्य के लिए, तो उन्हें कौन कौन सी ऐसी मूलभूत बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर अगर वो अनाज को भंडारित करते हैं तो अनाज अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है।
2: किसान भाई अपनी कड़ी मेहनत करके फसल तैयार करते हैं तो उन्हें भंडारण के सही तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि कीट कम लगे, नमी उसमें कम हो और इससे काफ़ी मात्रा में जो अनाज है वो भंडारित हो जाता है, जिससे कि नमी अगर कम होगी तो भंडारण अच्छा होगा, कीट कम लगेंगे तो भंडारण अच्छा होगा। किसान भाइयों को 10-12% तक आर्थिक हानि हो जाती है, क्योंकि भंडारण अगर अच्छे से नहीं किया जाता है तो इससे आर्थिक हानि किसान भाइयों को होती है। इसीलिए वैज्ञानिक तौर पर आवश्यक है कि किसानों की कड़ी मेहनत की कमाई अनुचित रखरखाव से खराब ना हो, इसीलिए भंडारण जो है आवश्यक होता है।
1: जो अनाज हम भंडारित करते हैं उसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, तो अनाज को भंडारित करते समय क्या क्या सावधानी बरतें?
2: आपने बिल्कुल सही कहा, खेत से लेकर अनाज को सुखाने, साफ करने और सुरक्षित रखने तक महिलाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसीलिए अगर उन्हें सही तकनीकी जानकारी दी जाए तो अनाज की काफ़ी हद तक अनाज की जो हानि होती है उसे रोका जा सकता है।
1: अनाज जो भंडारित करते हैं तो उसके जो खराब होने के मुख्य रूप से क्या क्या कारण होते हैं?
2: अनाज खराब होने के 4 मुख्य कारण होते हैं, नमी, कीट, चूहे और भंडारण के पात्र। यह 4 मुख्य कारण होते हैं जो अनाज को भंडारण के दौरान नुकसान पहुंचाते हैं।
1: नमी से बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए?
2: नमी होती है अगर अनाज में अधिक रह जाए तो इससे फफूंद लग जाती है, कीट तेजी से बढ़ते हैं, अनाज गल जाता है, सड़ जाता है और अंकुरित हो जाता है। इन सब कारणों से अनाज की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है और संक्रमित अनाज खाने योग्य भी नहीं रहता है। इसीलिए अनाज को तेज धूप में 15 से 20 दिन तक सुखाना चाहिए। कीट का प्रकोप इससे बहुत ही कम हो जाता है। सूखे हुए अनाज को शाम के समय कोठी में नहीं भरना चाहिए। सूखे अनाज को पूरी रात ठंडा होने दें, उसके बाद ही सुबह इसे कोठी में भरें। इससे अनाज में 3-4% तक नमी रह जाती है। ऐसा अनाज जो है भंडारण के लिए उपयुक्त होता है।
1: ज़्यादातर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में उनको पता नहीं रहता है कि नमी है वो कितनी है हमारे अनाज के अंदर। क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे पता पड़ जाए कि हाँ हमारा अनाज पूरी तरह सूख गया है?
2: इसका सबसे आसान तरीका यह है कि यदि दाने को दांत से काटने पर कट की आवाज़ आ जाए तो किसान भाइयों को समझ लेना चाहिए कि अनाज अच्छी तरह से सूख गया है और अब यह भंडारण के लिए उपयुक्त है।
1: कीटों के द्वारा भी आपने अनाज को भंडारण करने में समस्या बताई थी। कौन कौन से कीट हैं प्रमुख रूप से जो अनाज को सुरक्षित भंडारण करने में समस्या पैदा करते हैं?
2: कीटों के कारण औसतन 10-12% तक हानि होती है। कभी कभी अगर उचित भंडारण तकनीकी ना अपनाई जाए तो यह नुकसान 15-20% तक भी पहुंच सकता है। अगर प्रमुख कीट जो भंडारण के दौरान नुकसान पहुंचाते हैं उनकी बात की जाए तो वह है चावल का घुन, गेहूं का खपरा और आटे की सुंडी। यह भंडारण के दौरान बहुत ही अधिक नुकसान करते हैं। इसके अलावा कुछ कीट जो है खेत में ही दानों पर अंडे दे देते हैं, जो बाद में इन अंडों से इल्ली निकलकर दाने को अंदर ही अंदर खाकर खोखला कर देती है। ऐसा अनाज ना तो खाने योग्य रहता है और ना ही बोने के योग्य रहता है। इसीलिए अनाज की कटाई से पहले ही सावधानियां रखनी शुरू कर देनी चाहिए। किसान भाइयों को भंडारण के दौरान बहुत ही बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो भी अनाज आपको भंडारित करना है, जिस भी पात्र में भंडारित कर रहे हैं उसे पहले 1% मेलाथियोन के घोल से 10 मिनट तक भिगोकर अच्छी तरह से सुखा लें। इसे तेज धूप में 5-6 घंटे तक सुखाएं, जिससे कीटों का प्रकोप इसमें कम हो जाता है। काटे हुए अनाज को सीधा ही जमीन पर नहीं रखें, उसे बिछावन के लिए पहले कुछ न कुछ बिछा लें, क्योंकि इससे कीट और नमी लगने का खतरा अधिक होता है। अगर नीचे जमीन पर इन्हें रखेंगे तो कीट और नमी लग जाएगी, जिससे कि अनाज जो है वो संक्रमित हो सकता है। इसके अलावा अनाज लाने वाली जो गाड़ी होती है, ट्रैक्टर ट्रॉली होती है, उन्हें भी अच्छी तरह से धोकर सुखा लें। अनाज खेत से लाकर घर में कड़ी धूप में सुखाएं। सुखाते समय प्लास्टिक के मोम जामा का इस्तेमाल करना चाहिए और यह अच्छे से कीटनाशक से उपचारित होना चाहिए। इसके अलावा भंडारण से पहले अनाज को साफ कर ले, इसमें किसी भी प्रकार का भूसी ना हो, कटा फटा अनाज ना हो, संक्रमित अनाज ना हो और कंकड़ पत्थर ये आदि नहीं होना चाहिए। इसके बाद ही अनाज को भंडारित करें।
1: श्रद्धा जी, आपने अनाज भंडारण में चूहों की भी बात कही थी कि चूहे भी हमारे अनाज भंडारण में बहुत बड़ी समस्या पैदा करते हैं, तो चूहों के द्वारा भी हमारा अनाज काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इससे किस तरह बचाव करना चाहिए?
2: अक्सर किसान भाई यह समझते हैं कि चूहा जो है वो केवल थोड़ा बहुत अनाज खाता है, लेकिन वास्तव में जितना अनाज वो खाता है उससे 10 गुना अधिक अनाज ये काट कर बिखेर कर गंदा करके खराब कर देता है। इनके मल मूत्र जो है इसमें मिल जाने से अनाज जो है वो खराब हो जाता है। इसीलिए चूहा नियंत्रण के लिए कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले भंडार गृह या उसके आसपास की सफाई रखना चाहिए। दीवारों और फर्श और जो दरवाजे हैं उनमें अगर दरारें हैं तो उन्हें बंद कर देना चाहिए, ताकि चूहों के आने जाने का रास्ता बंद हो जाए। चूहा नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त समय है मई और जून, क्योंकि इस समय खेत में कोई भी खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे में चूहा जो है आसानी से विष चूहा खा लेता है। चूहा नियंत्रण के लिए 2-3% जिंक फास्फाइड मिला विष चूहा उपयोग में किसान भाइयों को लेना चाहिए। इसके लिए विष चूहा तुरंत ही नहीं रखना चाहिए, पहले 2-3 दिन बिना जहर वाला चूहा रखना चाहिए, ताकि चूहों को नई वस्तु को लेकर जो संकालु आदत होती है वह कम हो जाए और वह उसके बाद विष मिला चूहा रखने पर नियंत्रण अच्छा प्राप्त होता है।
1: सामान्यतः जो आप चूहे की बात कर रही हैं ये जहरीले होते हैं और इन्हें बच्चों से पशुओं से दूर रखना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हमारे किसान भाई अपने घर पर चूहों के लिए विष का चूहा बनाना चाह रहे हैं तो उन्हें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कोई दुर्घटना न घटने पाए?
2: विष चुग्गा बनाने के लिए जैसे कि अनाज होता है उसमें एक विशेष प्रकार की दवाई मिलाई जाती है जिससे खाने के बाद चूहे नष्ट हो जाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बाजरा या अन्य कोई भी अनाज उनमें हल्का मूंगफली का तेल लगा लें। इसके बाद 1 किलो बाजरी में 20 से 30 ग्राम जिंक फास्फाइड पाउडर डालकर एक लकड़ी से अच्छी तरह मिलाएं, क्योंकि अगर हाथ से मिलाएंगे तो सेहत पर खतरा हो सकता है। और इन्हें बच्चों से भी दूर रखें क्योंकि बच्चों को ये जल्दी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जब ये चुग्गा बन जाए तो इसे खेत के उन बिलों में डालें जहां चूहों की आवाजाही हो और भंडार गृहों की दीवारों के किनारे किनारे भी इसे डाल दें। अगले दिन सुबह जो बचा हुआ अनाज है उसे अच्छी तरह से इकट्ठा करके नष्ट कर दें। आवासीय जगहों के लिए एंटीकोगुलेंट कृंतक नियंत्रण दवाई, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं वो जहरीली होती है, नुकसान पहुँचाती है, तो इसीलिए जो आवासीय जगह है उनके लिए एंटीकोगुलेंट कृंतक नियंत्रक दवाई जो कि कम जहरीली होती है जैसे की ब्रोमोडियोलन, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई घर पर ही फिटकरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो कि नुकसानदायक नहीं होती है। इसका पाउडर बनाकर भंडार गृह के आसपास बिखेर दें जिससे चूहे खत्म तो नहीं होते हैं लेकिन ये भंडार गृह से दूर रहते हैं।
1: श्रद्धा जी, चलते चलते अंत में हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहेंगी जिन्हें हमारे किसान भाई अपना कर अगर अनाज भंडारित करते हैं उनका अनाज अधिक समय तक सुरक्षित रह सकते।
2: अंत में मैं हमारे किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसे पारंपरिक उपाय हैं जैसे कि नीम की पत्तियाँ, राख और कड़वे तेल। ये पारंपरिक उपाय सुरक्षित भंडारण के लिए उपयोगी माने गए हैं क्योंकि नीम की पत्तियों में प्राकृतिक कीटनाशक गुण पाए जाते हैं जो भंडारित अनाज में लगने वाले कीटों की वृद्धि को रोकने में सहायता करते हैं। इसके अलावा राख जो कि अनाज में नमी कम करने में मदद करती है और इससे कीटों की गतिविधि भी कम हो जाती है। पुराने समय में किसान इन उपायों का उपयोग करके लंबे समय तक अनाज को सुरक्षित रखते थे। हालांकि यह ध्यान में रखना है कि इन पारंपरिक उपायों के साथ साथ भंडारण स्थान अच्छी तरह से साफ हो, अनाज सूखा हो तथा समय समय पर उसका निरीक्षण भी उतना ही जरूरी है।
1: डॉक्टर साहबा, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमारे किसान भाइयों को अनाज सुरक्षित किस तरह भंडारित करें इसके बारे में जानकारी दी और इस जानकारी से हमारे किसान भाई निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: भैया और देखो, अभी आप सुन रहे थे जो नौनी सी भेंटवार्ता जाको विषय तो सुरक्षित अनाज भंडारण जाकी जानकारी दे रही थी डॉक्टर श्रद्धा परमार और उनसे बातचीत कर रहे थे श्री सोहन सिंह। तो भैया और देखो, हम उम्मीद करते हैं कि अबे डॉक्टर श्रद्धा बहन ने इतने अच्छे पूरे विस्तार के संग आप और उनको जो सभी बातें बताएं, उपाय बताए, घरेलू उपाय बताए, तो हम समझत हैं कि आपने ज़रूर उनकी बातन को नोट करो हुई है और पूरो लाभ लेंगे कि अनाज भंडारण कैसे करें, सुरक्षित कैसे रखें। ये सभी बातें आपने अच्छे से जानी और समझी और सुनी। अब भैया देखो, चर्चा तो अपन आगे और भी करें हैं, पहले हो जाए कछु मनोरंजन। तो सुनते माधुरी शर्मा से जो 900 गीत।

0: तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भाई और देखो, ब्राह्म के पास स्वागत है फिर से चौपाल कार्यक्रम में। भैया और देखो, अब अपन चर्चा करेंगे कि यातायात के नियमों का पालन करें। भैया और देखो, कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। अगर कहीं से भी आ रहे हैं, देखो कहीं भी जा रहे हैं, तो भैया हरो, वाहन चला समय और सड़क पार करत समय जल्दबाजी ना करें। हमेशा सावधानी रखें। काहे से के भैया देखो, अपनी सुरक्षा अपने हाथ होते। काहे से के भैया हरो, देखो अब सभी जगह पे सड़कें और वाहन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ऑटो और अन्य वाहनों को उपयोग आम है गौवे। ऐसे में यातायात नियमों का पालन करवो बहुत ही ज़रूरी है। भैया और दो पहिया वाहन चला समय हमेशा हेलमेट पहने। काहे से कि भैया देखो, हेलमेट सिर को गंभीर चोटों से बचाते हैं। और चार पहिया वाहन पे मैं सीट बेल्ट लगा कर जरूर रखें। और भैया देखो, वाहन चला समय मोबाइल फ़ोन को उपयोग ना करें। अगर ज़रूरी फ़ोन आ गया है तो भैया हो अलग एक तरफ खड़े होके बात करें। और कबों भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। अगर भैया और देखो, नशे की हालत में गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। और तेज़ी से कबों वाहन ना चलाएं, जैसे क्या है कि दुर्घटना हो सकता है। तो भैया देखो, गाड़ी हमेशा धीरे धीरे चलाएं। और भैया और देखो, सड़क पार कर समय पहले दाएं देखें, बाएं देखें और तभी जाके आगे बढ़ें। और भैया और देखो, बच्चों और बुजुर्गों को सड़क पर अकेलों ना छोड़ें। और रात के समय वाहन में लाइट और रिफ्लेक्टर सही रखें, ताकि भैया हो सामने से आवे बारे वाहन आसानी से दिखाई दे सकें। और एक और ख़ास बात है भैया हो, कि ट्रैक्टर या अन्य वाहनों में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को ना बैठाएं, जैसे कहा है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये भी याद रखें कि छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे को कारण बन सकता है। सो भैया और देखो, सरकार द्वारा बनाए गए यातायात नियम हमारी सुरक्षा के लिए हैं। यदि हम सभी नियमों का पालन करेंगे तो सड़क दुर्घटनाओं को काफ़ी हद तक कम करो जा सकता है। और हम सभी संकल्प लेवें कि स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। भैया और देखो, चर्चा तो अभी और भी करें हैं, पहले सुन लेते हैं जो 900 भजन मुन्ना लाल सैनी से।

भैया देखो, अब चलत चलत तो हम आपसे जाई के हैं, आप हमें आप हमेशा ध्यान रखें, और जो गर्मी में विशेष खान पान को भी ध्यान रखें, और दोपहरिया में अगर जरूरी निकलवो है तो अपने सुरक्षा से निकलें और साथ में पानी की बोतल लेके चलें। तो भैया वो अब चलबे की बेरा हो गई है, हमारे सभी भैया रन को कल्पा बहन की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: सुर्खी आकाशवाणी भोपाल से अभी ग्राम सभा कार्यक्रम प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक, विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक दास और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव।
3: प्रगति यानी कि प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार का एक प्रमुख मंच है, जो प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ साझेदारी में परियोजनाओं, योजनाओं और शिकायत निवारण की प्रत्यक्ष एवं वास्तविक समय में या रियल टाइम समीक्षा के माध्यम से उन्हें तेजी से आगे बढ़ाता है। प्रगति इस बात का सशक्त उदाहरण है कि डिजिटल शासन किस प्रकार नीतिगत मंशा को वास्तविक और दृष्टिगोचर प्रगति में बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया प्रगति भारत में प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं और महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों की निगरानी एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित कर चुका है। यह केवल एक समीक्षा मंच भर नहीं है, बल्कि नौकरशाही की निष्क्रियता को तोड़ने, केंद्र और राज्यों के बीच टीम इंडिया के दृष्टिकोण को सशक्त बनाने तथा ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास है जहां निर्णय समयबद्ध हो, उनके क्रियान्वयन की अपेक्षा की जाए और परिणामों का आकलन किया जाए। दीपक जी, इस बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं और ये बताएं, प्रगति किस तरह सरकार की अटकी हुई या स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स या परियोजनाओं को तेजी लाने में मदद कर रहा है और लागत में वृद्धि को भी चेक कर रहा है।
4: आपने जैसे कहा कि ये पूरा जो प्रगति है एक ऑनलाइन सिस्टम है, वेब बेस्ड सिस्टम है, चाहे उसका जो शुरुआत में जब पहले समस्याएं आती हैं, जो जिस प्रोजेक्ट को इस पे रिव्यू किया जाता है वो भी आपके देखेंगे तो वेबसाइट पर इनका डिटेल डाला जाता है। जैसे आपने कहा इसकी जो मीटिंग होती है जो प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं वो भी ऑनलाइन ही होता है, तो देखा जाए तो एक तरह से एक पेपरलेस एक पूरा प्रोग्राम है। और दूसरी बात यहाँ तक की है कि प्रगति में हम देखेंगे तो आज तक की जब से शुरू हुआ है आखिरी जो प्रगति हुए थे वो 51वां, तो इसपे ज्यादातर जो लिया जाता है वो है डिलेड प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट प्रकल्प जो है देर हो गए हैं, तो उसपे ज्यादातर देखेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आपका आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उन्हीं का ही होता है, जैसे रोड, रेल, पावर, कोल, हाउसिंग, इस तरह के सब्जेक्ट ज्यादातर आते हैं। उनके साथ साथ बहुत सारे सरकारी स्कीम, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े जिसको हम कहते हैं फ्लैगशिप स्कीम, जो बहुत बड़े स्कीम है, जैसे कि वन नेशन कार्ड, आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, जो हमारे हॉकर भाई लोग हैं उनको जो 10-10 हजार उसके बाद 20 और 50 हजार की लोन देने का जो व्यवस्था किया गया, स्वच्छ भारत मिशन, इनका भी रिव्यू होता है। इसके साथ साथ बड़े बड़े जो मुद्दे हैं जिसपे लोगों की बहुत सारे शिकायतें होती हैं तो उनका भी पूरा डिस्कशन होता है। उसमें मैं आपको जैसे एग्जांपल देख सकता हूँ, कोरोना को लेकर हुआ था, रेरा जो हमारे रियल एस्टेट रेगुलेशन जो है, जो उसके लिए जो पूरी व्यवस्था की गई है, उनकी ग्रेवियंसेस को, उनकी जो लोगों की जो शिकायतें हैं उनके ऊपर भी मीटिंग हुई है, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर पे भी हुआ है, आपका जनधन योजना पे भी हुआ है। तो देखा जाए तो जो प्रगति है इस पे खाली आधारभूत या जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का नहीं है, बल्कि सरकार की बड़े बड़े स्कीम, लोगों की जो समस्याएं होती है उनका भी मीटिंग में बातचीत होती है। जैसे हम जानते हैं सब कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का विलंब होता है या उसका लागत में बढ़ोतरी हो जाती है तो देखिए ये देश के लिए तो नुकसान है, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये होता है जब आप देर होता है तो लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, और जब आपका पैसे उसका जो लागत बढ़ जाता है तो हमारे एक्सचेकर पे, हमारे सरकार पे वो दबाव बढ़ता है। तो प्रगति ने ये दो चीजों को तो बहुत ही सही तरह से देखा जाए तो पूरे तरह से एड्रेस किया है, क्योंकि उनको हर स्तर पे देखा गया कि किस प्रोजेक्ट के किस कारण से डिले हो रहा है, चाहे वो जमीन अधिग्रहण हो, चाहे वो आपको एनवायरमेंट और जंगल की जो एनवायरमेंट और फॉरेस्ट का क्लियरेंस हो, कहीं पे आपका जैसे हम किसी को यूटिलिटी शिफ्टिंग, जैसे बिजली के बड़े बड़े खंभे हटाना, कहीं पे आपको बड़े बड़े पानी की पाइप जो जमीन के नीचे होता उनको हटाना, तो ये सब चीजें बारीकी से देखा जाता है। और बारीकी से देखने के बाद ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि सारे प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री तक जाता है, बहुत प्रोजेक्ट हैं जो उससे काफी पहले ही रिजॉल्व हो जाते हैं, जो चीजें रिजर्व नहीं हो पाते हैं वो प्रधानमंत्री आखिरी में उसका रिव्यू करते हैं। तो प्रगति होने से एक तो व्यवस्था ये हुई है कि जो प्रोजेक्ट विलंब हो रहे थे, जिनका कॉस्ट बढ़ रहा था, अगर प्रगति नहीं होती उनके कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाते, तो इसके कारण क्या हुआ कि आपको कॉस्ट तो घटा नहीं, पर कॉस्ट की जो बढ़ने में जो आगे की संभावना था उसको घटा दी गई। तो एक तरह से आपका जो जिसको हम कहते हैं फिजिकल बर्डन होता हमारे ऊपर, फाइनेंशियल बर्डन होता, वो घटा और समय भी इसके कारण बचा, जो बहुत डिले लगता है। जैसे आप हम सब जानते हैं जो जम्मू से श्रीनगर का जो रेलवे लाइन है जो कई सालों से अटका हुआ था, वो प्रगति के कारण बहुत जल्दी संभव हुआ। जैसे हम जानते हैं नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है, अगर वो जिस गति से जा रहा था और कई साल लग जाए तो उसको कंप्लीट होने में, प्रगति होने से उस पर उसका त्वरित गति में उसका काम हुआ है। इसका होने का कारण सिर्फ ये है क्योंकि जब हम जानते हैं कि कोई मीटिंग कोई एक प्रोजेक्ट का जब हर ऑफिसर को हर ब्यूरोक्रेट को पता चलता है कि प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो आप देखिए कि वहाँ पे तत्परता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना मेरी जानकारी है मैं ये जानता हूँ, जैसे कि प्रगति मीटिंग की नोटिस आती है और जो जो प्रोजेक्ट का नाम आता है, आप कोई भी मंत्रालय में जाइए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में जाकर बात करिए, वो देखेंगे ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी बन जाता है। क्योंकि वहाँ पे ये कोई नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री अध्यक्षता में ये कोई बोले कि आपने ये काम नहीं किया। और उसके कारण क्या होता है, अचानक से आप देखेंगे जो बैकग्राउंड कोऑर्डिनेशन है मीटिंग के पीछे की, जो एक दूसरे के साथ बातचीत करना, स्टेट गवर्नमेंट सोचिए कोई मिनिस्ट्री से बात कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उसको रिजॉल्व करने के संपूर्ण तरह से प्रयास करते हैं। याद है वाक्य कि कोई एक मीटिंग होने वाली थी जिसपे ये आपका टेलीकॉम का जो फाइबर नेटवर्क डाला जाता है उसके ऊपर प्रधानमंत्री का मीटिंग होने वाला था, काफी विलंब हो रहा था, मुझे क्योंकि मैं उसके बारे में लिखा था तो मुझे याद है, ठीक मीटिंग से एक दिन पहले जितने भी उसका स्टेक होल्डर हैं, जितने मंत्रालय हैं, सबने एक साथ कह दिया कि हमने सारी चीज रिजॉल्व कर ली है। तो देखिए इसका ब्यूटी है, क्योंकि आप देखेंगे तो कि जो है यही इसका जो है सुंदरता है कि जब प्रधानमंत्री मीटिंग लेते हैं तो उससे पहले ही बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो जाता है, और जब कॉस्ट ओवररन नहीं होता है, लागत नहीं बढ़ने को हम रोक सकते हैं, समय की देरी को विलंब जो होता है उसको रोक सकते हैं, तो इसके देखिए सबका फायदा होता है, सरकार का होता है और जैसे मैंने कहा लोगों को सुविधाएं बहुत जल्दी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया, सोचिए आपका जम्मू से श्रीनगर की जो रेलवे लाइन, सोचिए और 5 साल डिले हो जाता तो क्या होता, जो लोगों को इतना लंबा समय रोड से जाना पड़ता है या फ्लाइट की टिकट बहुत ज्यादा देकर जाना पड़ता है, उससे तो बच गए ना।
3: प्रगति में जो परियोजनाएं लाई जाती हैं वो अक्सर ऐसा होता है जो रुकी हुई रहती हैं या डिलेड होती है, क्या कारण है कि ये परियोजनाएं रुक जाती हैं, इनके प्रमुख कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? प्रगति तो करती है लेकिन क्या मंत्रालय स्तर पे या राज्यों के स्तर पे इनके भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं?
4: एकदम आपने सही कहा, और जैसे कि 4-5 जो सबसे प्रमुख कारण है जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, वो एक तो पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपका लैंड एक्विजिशन, क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिना जमीन के आप शुरू नहीं कर सकते। जैसे कि रोड आपको बनाने के लिए 100% आपको जमीन चाहिए। आप अगर पावर प्लांट बनाते हैं तो आपको जमीन चाहिए। अगर आप सोचिए कोई बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है तो सब में आपको जमीन चाहिए। अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी जो दिक्कत खाली प्रगति की बात नहीं, अगर आप हर साल की अगर सवाल देखेंगे जो पार्लियामेंट में आता है, हमारे संसद में आता है, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय हो, परिवहन मंत्रालय हो, या रेलवे मंत्रालय हो, या आपका सिविल एविएशन मंत्रालय हो, ये सब में देखेंगे तो जो भी सवाल पूछा जाता है कि मुख्य कारण क्या है डिले का, तो कहा जाता है लैंड एक्विजिशन, जमीन के अधिग्रहण में देरी। दूसरा जो सवाल आता है वह आपका क्लियरेंसेस, क्लियरेंसेस क्या क्या है जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, इस पे देरी बहुत, एक ये दो जो है सबसे प्रमुख कारण है। इसके साथ जैसे मैं आपको पहले बताया था कि तीसरा कारण है कि जिसको हम यूटिलिटी शिफ्टिंग देखेंगे, जहाँ पे एक नया सोचिए कोई प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ पे पहले कभी बिजली के बड़े बड़े हाई टेंशन वायर का जो खंबे लगे होंगे और वो छोटे नहीं है कि अचानक रातों रात बदल सकते हैं, तो इनको सब शिफ्टिंग करने का भी बहुत टाइम लगता है। मेनली यही 3-4 चीजें हैं जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले होता है, और जब प्रगति होती है तो उस पे क्योंकि सारी बातें क्लियरली आती है। जैसे मैंने आपको ये बताना चाहूंगा कि जब ये प्रगति मीटिंग होती है उस पे प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में होते हैं, आपके कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग में होते हैं, सब वर्चुअली जुड़े होते हैं ऑनलाइन माध्यम से, फिर सारे चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं। तो जैसे जमीन अधिग्रहण की बात अगर हम करें, हम तीनों चीजें जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण की बात करें और तीसरा जो यूटिलिटी शिफ्टिंग, ये तीनों का जो मुख्य जिम्मेवारी है वो राज्य सरकार का है। तो जब मीटिंग होती है इसकी तो ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, या ये आपको जैसे कहें निर्देश दिया जाता है कि आप इसको जमीन के अधिग्रहण को जल्दी से संपूर्ण करें। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ एग्जाम्पल, अभी प्रगति

0: क्षति हुई थी उस पर रेलवे का भी कोई प्रोजेक्ट था जहाँ पे वहाँ पे भी कोई कंपनसेशन जो आपका लोगों को जो पैसे देने की बात आई थी कुछ प्रोजेक्ट के कारण, तो उस पर प्रधानमंत्री ने बहुत ही सख्त निर्देश दिया रेल मंत्रालय को कि जल्दी से लोगों को जो कंपनसेशन है दीजिए ताकि काम कंप्लीट हो जाए। तो इस पे क्या होता है कि जो केंद्र का मंत्रालय हो या राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं, देखिए केंद्र सरकार में देखा जाए तो सारे काम कैबिनेट सेक्रेटरी मुख्य है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का उनका अंडर सेक्रेटरीज हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में जो राज्य सरकार का तो मुखिया ही देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, ब्यूरोक्रेटिक हेड है, वो तो चीफ सेक्रेटरी है। तो जब चीफ सेक्रेटरी को कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है मुख्य सचिव को, तो उसका सीधा असर देखने को मिलता है। मैं आपको जैसे एग्जाम्पल बताऊं, दिल्ली के एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अर्बन एक्सटेंशन रोड, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ये सब प्रोजेक्ट को पीएम ने एक एक करके प्रोजेक्ट का रिव्यू किया हुआ है, और इस रिव्यू का कारण प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट हुए।
1: जी, प्रगति की अभी तक 51 बैठकें हो चुकी हैं और इसमें 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया जा सका है और कुछ तो कंप्लीट भी हो चुके होंगे। ये मंच प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष देखरेख में केंद्र और राज्यों के बीच वास्तविक समय में तालमेल सुनिश्चित करते हुए जवाबदेही को और अधिक अच्छा करती है। जमीनी स्तर पर प्रगति और क्या बदलाव ला रही है, चाहे वो गवर्नेंस लेवल हो या लोगों के लिए आराम सुनिश्चित करना या ईज ऑफ लिविंग जो कि सरकार का बहुत फोकस एरिया रहा है, वो सुनिश्चित करने में कैसे मदद कर रही है?
0: जैसे आपने कहा कि करीबन 85 लाख करोड़ और उसके साथ मिला दें तो पिछले हफ्ते 30,000 करोड़ का और प्रोजेक्ट हुए हैं, तो 85 लाख 30,000 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट का रिव्यू हुआ है और ये करीबन 3,300 प्रोजेक्ट से भी ज्यादा हैं। पहला वाला तो था इसकी कीमत कितना कॉस्ट था, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो करीबन 3,300 से ऊपर है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कुछ प्रोजेक्ट नहीं, ज्यादातर प्रोजेक्ट ही इस पे आपके एक्सपेडाइट हुए हैं। जितना भी प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे प्रगति में आई है उनमें बहुत जल्दी उनकी गति पकड़ी है और ज्यादातर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। दूसरी बात, आपने जो कहा कि इस पे जमीनी स्तर पे क्या परिवर्तन आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब मीटिंग होती है जिसपे प्रधानमंत्री होते हैं, भारत सरकार के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और हर स्टेट गवर्नमेंट के हर राज्य सरकार के मुख्य सचिव होते हैं, तो देखिए एक मैसेजिंग होता है कैसे सबको साथ मिलकर काम करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, कोई भी अगर प्रोजेक्ट चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पावर का प्रोजेक्ट हो, कोई मंत्रालय का जब आता है उनको ये जरूरी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट से बात करें। तो ये जो कल्चर धीरे धीरे, ये मेरा नहीं है, इस पे मुझे सोचना नहीं, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रेक द साइलोज, कि आप जो अपने अपने हिस्से में बंधे रहते उससे थोड़ा बाहर जाइए। आप ये सोचिए कि खाली ये मेरा रोड का प्रोजेक्ट नहीं है, रेल का प्रोजेक्ट नहीं, ये देश का प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है ये सोच ये धीरे धीरे सबके जो अंडरस्टैंडिंग और जहन में ये आने लगा है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट में कारण देर हो रहा है तो आप सोचिए कि कोई सचिव जो है मुख्य सचिव को फोन करके बात करते हैं कि देखिए ये प्रगति में आ रहा है, ये प्रोजेक्ट को जल्दी किया जाए। जब आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी या कनेक्शन थोड़ा फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाएगा तो उसका असर ये भी होगा बाकी जो प्रोजेक्ट हैं जो प्रगति में नहीं आ रहे वहां भी अगर डिले हो रहा है तो आप उसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा असर है, देखिए हर जो सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, अधिकारी हैं, जब उनको ये पता है कि प्रोजेक्ट अगर कोई मेरा बहुत ज्यादा विलंब हो गया या कॉस्ट बढ़ गया तो प्रगति में चला जाएगा, प्रगति में गया तो फिर मुझे तो बहुत सारी सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो इसका असर क्या होगा, जो प्रोजेक्ट धीमे चल रहे हैं उनको वो लोग भी कोशिश करते हैं वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक से होता है, ताकि वो प्रोजेक्ट प्रगति में ना जाए। तो मुझे लगता है पूरा जो है वर्क कल्चर को प्रगति ने काफी बदलाव लाया है।
1: जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात की कि ब्रेकिंग द साइलोस, ये साइलोस को ब्रेक करने में मदद करता है। आपको लगता है कि ये जो बैठक होती है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद को इंस्टीट्यूशनलाइज या संस्थागत रूप देने में भी मदद कर रहा है?
0: आपने ये बात तो एकदम सही कहा कि एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये स्ट्रेंथन करता है, इसको जब मजबूत करता है। इसका कारण मैं आपको इसलिए बताया कि जैसे जितना भी आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट को तभी सक्सेसफुल हो सकता है, तभी कामयाब हो सकता है जब राज्य सरकार संपूर्ण तरह से उसके साथ काम करे। वो तभी हो पाएगा जब दोनों में सहयोगिता होगा या कोऑपरेशन होगा, तो फेडरल कोऑपरेशन के बिना ये तो काम हो नहीं सकता। दूसरा बात क्या है कि जब हर व्यक्ति एक ही प्लेटफॉर्म पे रहकर बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 50वां प्रगति हुई थी उसके बाद हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन शाह ने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहां पे हम लोगों ने सवाल भी पूछा था कि जो है, तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कहा कि कोई भी राज्य सरकार या हर राज्य सरकार चाहता है कि ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो और कोई सरकार नहीं चाहता उसका डिले हो, क्योंकि विलंब होगा, कॉस्ट ओवररन होगा तो सबको समस्या होता है। तो देखिए इसका मतलब यह है कि हर सरकार चाहती है रोड बने, हाईवे बने, रेलवे लाइन डले, नया ट्रेन चले, अच्छे पावर प्रोजेक्ट आए ताकि वो उनकी आवश्यकता को पूरा कर सके, और वो तभी कंप्लीट होगा जब केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर बात करेंगे। एक बात ये भी ध्यान देना पड़ेगा, एक कंप्लीटली एपोलिटिकल सिस्टम है, इस पे केंद्र में सरकार, राज्य में कौन सरकार है इसका कोई असर ही नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे हर राज्य के प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपेडाइट किया गया है, कंप्लीट किया गया है।
1: जी दीपक जी, आपने बहुत विस्तार से प्रगति के बारे में हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक, विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक दास और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: यह कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। सुनते हैं फिल्म संगीत। सौदागर फिल्म के गीत से शुरुआत कर रहे हैं। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और लीजिए अब सुनिए संगीत फिल्म का गीत। ज्वाली मुखर्जी ने इस गीत को गाया है, संतोष आनंद ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत कार्यक्रम। अगला गीत सड़क फिल्म से है, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ें, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

कार्यक्रम के आखिर में लम्हे फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। लता मंगेशकर ए हरिहरन ने इस गीत को गाया है। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया है शिव हरि ने।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी, मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
4: कवि हेमंत देवलेकर।
5: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
6: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
7: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में, और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
3: सबने मिलकर ये तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
4: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है।

भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज़ को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारे ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा बंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए चार सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का ज़खीरा कायम किया है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अहल तालिब इल्मों के लिए तहफ्फुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स्ड डबल खिलाड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और आईपीएल क्रिकेट में अहम क्वालिफायर टू का मैच नए चंडीगढ़ में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अपनी सरहद की हिफाजत करना और गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से खत्म करना मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए इंतहाई अहम है। वो आज गुजरात के शहर भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर G7 और G13 की अहम सरहदी चौकियों का इफ्तिताह करने के बाद फौजियों और अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ड्रोन्स रडार समेत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि एक नाकाबिले दरअंदाजी और खामियों से पाक सिक्योरिटी ग्रिड कायम की जा सके। वजीर दाखिला ने एक नए क्वाड्रीपार्टाइट सिक्योरिटी ग्रिड को मुतारिफ कराने के साथ सरहदी इंतजामिया में एक बड़ी ढांचाती तब्दीली का ऐलान किया।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तरह बदलने का निर्णय किया है। कंसेप्ट के साथ सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे
0: हैं। मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने रियासत में दरअंदाजी पर तशवीश जाहिर की है जो आबादियाती तब्दीलियों का बाइस बन रही है। नवन्ना में रियासती सेक्रेटरिएट में मर्दमशुमारी के प्रिंसिपल अफसरान की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि साबिका सरकार दरअंदाजी के मामले पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने वादे किया कि पहले के टीएमसी इंतजामिया ने मरकज की जानिब से बरवक्त खतूत मौसूल होने के बावजूद मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों का आगाज नहीं किया था। वजीर आला ने आबादियाती मुंतकली को सरहदों पर बेकायदा ताड़बाड़ करार दिया। उन्होंने उजागर किया कि सरहदी अजला सबसे ज्यादा मुतासर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों के जरिए जमा किए गए आदाद और शुमार को पॉलिसी साजी और बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमें तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। म्यांमार के सदर यू मिन हांग वांग कल से 3 जून तक भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर में दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जयसवाल ने बताया कि दो तरफा बातचीत के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादले ख्याल करेंगे। भारत चीन सरहदी मामलों पर मुशावरत और तालमेल के लिए मुनक़दा मीटिंग के बारे में जनाब जयसवाल ने कहा कि मुज़ाकरात तामीरी और मुस्बत थे। बांग्लादेश के गैर कानूनी माइग्रेंट से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में जनाब जयसवाल ने कहा कि तमाम गैर कानूनी माइग्रेंट्स के मामले में कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। भारत और अमरीका के दरमियान तजारती मुज़ाकरात पर तर्जमान ने कहा कि भारतीय तजारती टीम ने अप्रैल में अमरीका का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि अगले अमरीका से टीम की भारत आमद मुतवक्का है जिसमें तजारती उमूर पर मजीद बातचीत की जाएगी। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में पेट्रोल डीजल और LPG का स्टॉक इत्मीनान बख्श है और तमाम रिफाइनरीज पूरी सलाहियत के साथ काम कर रही हैं। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि पीजी की पैदावार अब तक सबसे ज्यादा है, जो कि तकरीबन 92,000 मीट्रिक टन योमिया है।
2: हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के सफिशियंट स्टॉक है, नेचुरल गैस

0: लाना है, पेट्रोलियम में 30% इजाफे की छूट दी है, जबकि 156 ने 30% इजाफे की रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूरत हाल का जायजा ले रही है। कोर्ट ने मुल्क की तमाम हाई कोर्ट को हिदायत दी है कि अपने फैसले को महफूज करने के 3 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाएं। अदालत उज़्मा ने यह भी वाजे किया कि फैसला सुनाने में ताखिर से मुकदमे के फरीकैन को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि ज़ाती आज़ादी के मुकदमों में तेज तर फैसलों की जरूरत है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची पर बेंच ने कहा कि जमानत की जिम्मेदारियों पर ऑर्डर उसी रोज जाना चाहिए, नहीं अगर उन्हें मखसूस रखा जाता है तो अगले रोज उनका फैसला सुनाया या अपडेट किया जाना चाहिए। बड़ी अदालत में हिदायत जारी करते हुए अदालत ने कहा कि जमानत या सजा कत्ल करने के ऑर्डर को फैसला सुनाने के बाद जल्द से जल्द जी हुकाम को इरसाल किया जाना चाहिए, क्योंकि फैसला सुनाया जा चुका है और मुल्जिम को तरजीही तौर पर उसी रोज या ज्यादा से ज्यादा रोज रिहा किया जाना चाहिए। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत ने किसानों को बीज दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए 1,74,000 क्विंटल का कौमी बीज का जखीरा कायम किया है। नई दिल्ली में ज़राअत बराए खरीफ मुहिम 2026 पर कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मीडिया से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अब तक 9,76,000 किसान शनाख्ती कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों तक रसाई के लिए अहदा दस्तावेजात की जरूरत नहीं होगी। जनाब चौहान कहा कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि खादों का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी मकासद के लिए किया जाए।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवास स्कीम को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: तालीम के धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि पेपर अफशां होने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। डीडी न्यूज के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने कहा कि दोबारा इम्तिहान का इनेकाद बगैर किसी खामी के मुनज्जम और मुनासिब ढंग से किया जाएगा। उन्होंने इस काम पूरा करने में हर किसी से ताउन की अपील की।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम से सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: तलबा से खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी तशवीश को समझती है। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनके एतमाद को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि हुक्काम ने सख्त फैसला किया है क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि किसी भी अहल तालिब इल्म का मुस्तकबिल इम्तिहान माफिया के हाथों में न पड़े या बेजाब्तगियों का शिकार न होने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पेपर लीक मामले में होने वाली खामियों के लिए जवाबदेही पर जोर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक आदे की ब्रेंच इस मामले पर दरखास्तों की समाअत कर रही थी, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को एक मजबूत और खुदमुख्तार इदारे में तब्दील करने या मेडिकल दाखिले के इम्तिहान के इनेकाद के लिए उसकी तंजीम नौ करने की हिदायत की दरख्वास्त शामिल थी। बेंच ने मरकजी हुकूमत से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा और इसकी समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का हुक्म दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि हुकूमत नौजवानों के बारे में फिक्रमंद है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि इस मामले में कोई कोताही न हो। उन्होंने बेंच को यह भी बताया कि 21 जून को होने वाले नीट यूजी के दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए कुछ नए मैकेनिज्म बनाए गए हैं। दिल्ली हुकूमत ने ऐलान किया है कि नीट यूजी 2026 इम्तिहान के उम्मीदवारों को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जाएगी। ये इम्तिहान अगले महीने की 21 तारीख को नकद होंगे। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड दिखाकर डीटीसी बसों में मुफ्त सफर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन तलबा को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दिन उनके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने आज बंगलुरु में वजीर आला सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर कर लिया और वजरा की कौंसिल को फौरी असर से तहलील कर दिया, ताहम उन्होंने मुतबादिल इंतजाम न होने तक सिद्धारमैया से निगरान वजीर आला के तौर पर खिदमात अंजाम देने को कहा। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज भारतीय बहरिया के 48वें नायब सरबराह का

0: ओहदा संभाल लिया। ओहदा संभालने पर फ्लैग ऑफिसर ने नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर गुलहाय अकीदत नजर करके मुल्क की खिदमत में अजीम कुर्बानी देने वाले बहादुरों को खराज अकीदत पेश किया। पुणे की बावकार नेशनल डिफेंस एकेडमी के साबिक तालिब इल्म रहे वाइस एडमिरल अजय कोछर को जुलाई 1988 में भारतीय बहरिया में कमीशन किया गया था। मिसाइल और गन सिस्टम के माहिर अजय कोचर ने अपने 37 साल से ज्यादा अरसे पर मुहित करियर के दौरान कमांड ऑपरेशनल और स्टाफ असाइनमेंट की वसी तर जिम्मेदारी संभाली है। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता सिफारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है क्योंकि दोनों फरीक मौजूदा जंगबंदी की मुद्दत को 6 दिन तक बढ़ाने और आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने के मफाहमतनामे का जायजा ले रहे हैं। अमरीका के नायब सदर जे डी वैंस ने तस्दीक की है कि मुज़ाकरात शुरुआती समझौते के बेहद करीब हैं। हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आखिरी मंजूरी अभी ज़ेरे इल्तवा है। इस दौरान ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है और तेहरान लफ्जों के बजाय ठोस कार्रवाई का मुतालबा करता है। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: मलिक तावन काउंसिल GCC ममालिक इस मामले में हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ रहे हैं। कतर ने अबनाए हुरमुज में बहरी कवानीन से मुतालिक हतमी नुकात तय करने के लिए तेहरान में अपनी खसूसी सालिसी टीमें तैनात की हैं। दोहा भी जारी किए गए ईरानी फंड्स के सख्ती से इंसानी बेहतरी के इस्तेमाल को मुमकिन बनाने के लिए तीसरे फरीक पर मबनी मुनज़्ज़म मैकेनिज्म के क़याम पर काम कर रहा है। मजीद पेचीदगी लेबनानी नुक्ता नज़र से भी है। तेहरान सभी इलाकाई महाजों का अहाता करते हुए बाहमी मफाहमतनामे पर जोर दे रहा है लेकिन जनूबी लेबनान में इसराइल की जारी फौजी कार्रवाइयाँ और नकल मकानी अहकाम इस मामले में रुकावट बन रहे हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीन नजवी।
0: पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पख्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट PTM कारकुन फरीदुल्ला फरीद की मुबैना जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से संगीन तशवीश का इजहार किए जाने के बाद पाकिस्तान को इंसानी हकूक से मुतल्लिक अपने रिकॉर्ड के ज़िम्न में ताज़ा तनकीद का सामना है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि आफरीदी को पेशावर से 18 मई की शाम को अगवा किया गया था। उनके कुनबे की जानिब से बार बार अपील किए जाने के बावजूद मकामी पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। नेज उन्होंने उनकी गुमशदगी के बारे में किसी बाकायदा कार्रवाई का आगाज भी नहीं किया है। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल भारत की मर्दों की डबल जोड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रिंकी रेड्डी और चिराग ने अरुण ताई और कांग हाईजेन की मलेशियाई जोड़ी को 19-21, 21-17 और 21-13 से शिकस्त दी। IPL क्रिकेट के चंडीगढ़ में जारी दूसरे क्वालिफायर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 215 रन का निशाना रखा है। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरे क्वालिफायर के आज हो रहे मैच की फातिह टीम का मुकाबला इतवार के रोज फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए 4 सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आबादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का ज़खीरा कायम किया है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अहल तालिब इल्मों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं और IPL क्रिकेट में अहम क्वालिफायर 2 का मैच नए चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत।

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। श्रोताओं, आईपीएल केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि जुनून, रोमांच और खेल भावना का एक ऐसा उत्सव है जो हर वर्ष करोड़ों दर्शकों को एक सूत्र में बांधता है।

श्रोताओं नमस्कार। देश भर में आईपीएल 2026 का रोमांच जारी है। आईपीएल सिर्फ एक सीजन नहीं है बल्कि रिकॉर्ड्स, भावनाओं, युवा जोश और बेहतरीन क्रिकेट की कहानी है। 28 मार्च 2026 को शुरू हुआ आईपीएल अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। आईपीएल में 10 टीमें उतरी थीं लेकिन अब सिर्फ 3 टीमें बची हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो फाइनल में पहुंच चुकी है, इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के लिए आमने सामने हैं। अभी दोनों के बीच मुकाबला जारी है। आईपीएल 2026 का सफ़र बड़े ही उतार चढ़ाव भरा रहा। 10 टीमों के साथ शुरू हुए टूर्नामेंट में 70 लीग मुकाबलों के बाद 4 टीमों ने प्लेऑफ में जगह बनाई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बड़ी टीमें इस बार प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच पाईं। पहले क्वालिफायर में RCB ने गुजरात टाइटंस को बुरी तरह हराया और फाइनल में जगह बना ली। इस मैच में RCB के 254 रन के टारगेट के सामने गुजरात टाइटंस की टीम सिर्फ 162 रन पर ढेर हो गई और 92 रन से मैच हार गई। आईपीएल की पॉइंट टेबल में पहले और दूसरे नंबर पर रहने से ये फायदा होता है कि अगर आप एक मैच हार भी जाएं, तो दूसरा मौका मिल जाता है। अब गुजरात टाइटंस के पास फाइनल में पहुंचने का एक और मौका है। आईपीएल के पहले क्वालिफायर के हीरो रजत पाटीदार रहे थे, जिन्होंने 33 गेंदों में 93 रन की पारी खेली थी। आईपीएल के प्लेऑफ में इस बार नेट रन रेट का बड़ा रोल रहा। जब प्लेऑफ की बारी आई तो 3 टीमों के बराबर 18 पॉइंट थे। नेट रन रेट ने तय किया कि कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे। आखिरकार बेंगलुरु पहले नंबर पर, गुजरात दूसरे और हैदराबाद तीसरे नंबर पर रही। वहीं राजस्थान रॉयल्स 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंची। इस बार का आईपीएल कई मायनों में खास रहा। एक तरफ विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों ने फिर साबित किया कि क्लास कभी खत्म नहीं होती, तो वहीं दूसरी ओर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया। राजस्थान के इस युवा बल्लेबाज ने छक्कों की ऐसी बारिश की कि क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूट गया। वैभव ने एक आईपीएल सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिस गेल ने साल 2012 में 59 छक्के जड़े थे, लेकिन वैभव ने इस सीजन में अब तक 65 छक्के लगाकर रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाली लिस्ट में आंद्रे रसेल और जोस बटलर जैसे नामचीन पावर हिटर्स काफ़ी पीछे छूट गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने कमाल की पारी खेली। वैभव ने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन की पारी खेली। वैभव 3 रन से क्रिस गेल का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। क्रिस गेल ने 2012 में 30 गेंदों पर शतक लगाया था। क्रिस गेल ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की। क्रिस गेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, वैभव कितना जबरदस्त खिलाड़ी है, शानदार नई सिक्स मशीन। वैभव सूर्यवंशी ने एक आईपीएल सीजन में किसी भी अनकैप्ड बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वैभव इस सीजन में बुधवार तक खेले गए मैच तक 680 रन बना चुके हैं, जो कि आईपीएल के इतिहास में एक अनकैप्ड खिलाड़ी के बल्ले से निकला सबसे बड़ा स्कोर है। अब बात करते हैं उन तीनों टीमों की जिन पर इस समय पूरे क्रिकेट जगत की नज़र है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल 2026 के खिताब की दावेदार हैं। इन तीनों टीमों की ताकत और कमजोरी पर हम चर्चा करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस सीज़न की सबसे संतुलित टीम नज़र आई है। पिछले कुछ सालों में RCB के लिए कहा जाता था कि टीम सिर्फ बल्लेबाजी पर निर्भर है, लेकिन इस बार कहानी बदल गई है। विराट कोहली ने फिर साबित किया कि बड़े मंच पर

उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। कप्तानी चाहे किसी के पास हो, लेकिन दबाव के समय पूरी टीम की धड़कन कोहली ही बने रहते हैं। उनके साथ युवा बल्लेबाजों ने और फिनिशर्स ने भी शानदार योगदान दिया। विराट कोहली ने अब तक खेले गए 15 मैचों में 600 रन बनाए हैं। विराट के नाम 4 अर्धशतक हैं। बेंगलुरु की दूसरी बड़ी ताकत टीम के कप्तान रजत पाटीदार हैं। पहले क्वालिफायर में रजत की बल्लेबाजी के दम पर टीम ने एक तरफा जीत हासिल की थी। रजत पाटीदार ने 14 मुकाबलों में 486 रन बनाए हैं। आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैटिंग की गहराई है। टीम के पास पावर प्ले में तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, बीच के ओवरों में स्पिन खेलने वाले देवदत्त पड्डीकल और कृणाल पांड्या हैं, और डेथ ओवर में बड़े शॉट लगाने के लिए टिम डेविड और जितेश शर्मा हैं। लेकिन सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, इस बार आरसीबी की बॉलिंग ने सबको हैरान किया है। तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से विकेट निकाले और स्पिनर्स ने बीच के ओवर्स में रन रोककर मैच का रुख बदला। बेंगलुरु के लिए भुवनेश्वर कुमार खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार मैच की शुरुआत में विरोधी टीम के विकेट चटकाते हैं, जिससे विरोधी बल्लेबाज दबाव में आ जाते हैं। वे इस आईपीएल में सबसे ज़्यादा 26 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं। भुवनेश्वर कुमार के पास ही पर्पल कैप है। भुवनेश्वर कुमार के अलावा कृणाल पांड्या भी बल्लेबाजों के लिए पहेली बने हुए हैं। उनकी अचानक आती बाउंसर का जवाब अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पास नहीं होता। कुल मिलाकर आरसीबी आईपीएल की खिताब की दावेदार तो है, लेकिन उसे दबाव वाले मैचों में बिखरने की आदत से बचना होगा, क्योंकि फाइनल मुकाबले का प्रेशर अलग होता है। गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल की शांत लेकिन खतरनाक टीम है। गुजरात टाइटंस को इस आईपीएल की सबसे बेहतर सिस्टम वाली टीम कहा जा रहा है। इस टीम में स्टार खिलाड़ियों की भरमार तो नहीं है, लेकिन हर खिलाड़ी अपनी भूमिका अच्छी तरह से समझता है। गुजरात टाइटंस की असली ताकत उसका संतुलन है। बल्लेबाजी में स्थिरता और गेंदबाजी में गहराई, यही उसकी पहचान रही है। टॉप ऑर्डर ने लगभग हर मैच में टीम को अच्छी शुरुआत दी। मध्यक्रम ने जिम्मेदारी निभाई और गेंदबाजों ने कम स्कोर को भी डिफेंड किया। गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने अब तक 652 रन बनाए हैं। कप्तान शुभमन गिल भी रन मशीन बने हुए हैं। वे 618 रन बना चुके हैं। गुजरात की गेंदबाजी भी दमदार है। कगिसो रबाडा अब तक 26 विकेट चटका चुके हैं और पर्पल कैप की रेस में हैं। स्पिनर राशिद खान के नाम 19 विकेट हैं। गुजरात टाइटंस की ताकत संतुलित गेंदबाजी और शांत कप्तानी है। वहीं टारगेट का पीछा करते वक्त दबाव में आना कमजोरी भी है। अगर वो इस चुनौती को पार कर लेती है तो खिताब की ओर कदम बढ़ा सकती है। खिताब की रेस में दौड़ रही तीसरी टीम राजस्थान रॉयल्स है, जिसकी बल्लेबाजी 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के आसपास घूमती है। वैभव की आक्रामक शुरुआत बड़े बड़े बल्लेबाजों का हौसला तोड़ देती है। बुधवार तक खेले गए मैच में 15 साल की उम्र में 65 छक्के, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, आईपीएल के इतिहास का नया अध्याय है। अगर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चलता है तो राजस्थान रॉयल्स की टीम 200 रन का स्कोर आसानी से बना रही है। वैभव बुधवार तक खेले गए 15 मैचों में 680 रन बना चुके हैं और ऑरेंज कैप होल्डर हैं। उनके नाम 450 हैं। वैभव के अलावा यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल भी फॉर्म में हैं और हर मैच में रन बटोर रहे हैं। एक तरफ जहां राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बल्लेबाजी है, तो वहीं गेंदबाजी में निरंतरता की कमी नजर आती है। जोफ्रा आर्चर 24 विकेट चटका चुके हैं, लेकिन अकेले जूझते नजर आते हैं। दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिल पाता। अगर राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल की ट्रॉफी अपने घर ले जानी है तो गेंदबाजी पर काम करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी।
अगर

मौजूदा फॉर्म देखें तो सबसे मजबूत दावेदार आरसीबी नजर आती है, क्योंकि टीम के पास अनुभव भी है और संतुलन भी। बल्लेबाज फॉर्म में हैं और गेंदबाजों में भी आत्मविश्वास दिख रहा है। आरसीबी ने पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस को हराकर बाकी दोनों टीमों पर मानसिक दबाव तो बना दिया है। अगर राजस्थान रॉयल्स दूसरा क्वालिफायर जीतकर फाइनल में पहुंचती है तो उसका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होगा। वैभव सूर्यवंशी ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पर मैच बदल सकते हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस को कम नहीं आंका जा सकता। शुभमन गिल की टीम कमबैक कर सकती है। इस सीजन ने सिखाया कि आईपीएल अब सिर्फ बड़े नामों का टूर्नामेंट नहीं रहा, अब यहाँ 15 साल का लड़का भी इतिहास रच सकता है। इस सीजन ने ये भी बताया कि सिर्फ स्टार खिलाड़ी काफ़ी नहीं, संतुलित टीम ही आखिर तक टिकती है। आरसीबी ने दिखाया कि कैसे पुरानी गलतियों से सीखकर उन्हें अपनी ताकत बनाया जा सकता है। गुजरात ने सिखाया कि अनुशासन और प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। वहीं राजस्थान ने दिखाया कि बिना डरे मैदान पर खुलकर खेलना हर चुनौती को छोटा साबित कर सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन बनेगा आईपीएल 2026 का विजेता। धन्यवाद।

0: अभी आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था कौन होगा आईपीएल 2026 का विजेता। वार्ताकार थे राहुल गढ़वाल। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत। होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
4: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था,
1: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम खेल जगत। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, सुहाना सफर फिल्म से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और लीजिए आप सुनिए सफ़र फिल्म का गीत, इसे गाया है मुकेश ने। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत मेरे हमसफर फिल्म से। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।

मेरे हमसफर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम के साथ हाजिर है आपका दोस्त प्रेमचरण खेमरिया। पहला गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर है, बिलहरी बड़खेरा से संतोष ठाकुर, काशी तिवारी, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल, मुन्ना खान और ग्राम पहरुआ से फरमाइश की है रामकुमार लोधी और गोविंद यादव ने। अगली फरमाइश आदर्श नगर मलोट पंजाब से है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा की। इस गीत को सुनना चाहते हैं घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है सिंदूर फिल्म के गीत की। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत।

अंदाज लीजिए। इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में, गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। और इस गीत के लिए फरमाइश की है करियादंड हट्टा ज़िला बालाघाट से हुलास राम कटरे नानेश्वरी कटरे, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जैतिक बिरक और मीका बिरक, आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार से फरमाइश की है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने। आप सभी की फरमाइश पर पेश है अंदाज फिल्म का गीत।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश कार्यक्रम। अगली फरमाइश छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने की है। जयराज प्लॉट राजकोट से फरमाइश करते हैं मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट। आप सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मन की आंखें फिल्म के गीत की। साहिर के लिखे गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत रॉय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से फरमाइश की है अभिजीत गवाणकर, राही श्रीमती सरिता गवाणकर,

केसरी, शंभू केसरी, नया बाज़ार बक्सर से फरमाइश की है राजेश केसरी, पंकज केसरी, रोहन केसरी ने। नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया रीत और ऋषभ राजावत ने। आप सभी ने सुनना चाहा है स्वयंवर फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

दूध का कर्ज फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्वी मुखर्जी का ख्याल गायन। राग है भाव कौंस, विलंबित और द्रुत तीन ताल में निबद्ध हैं।

अभी आपने पूर्वी मुखर्जी का ख्याल गायन राग भाव कौंस में सुना। विलंबित और द्रुत तराना तीन ताल में निबद्ध थे। अब आज का राग रजनी कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज़ रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताज़ा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।